0: कृषि विभाग महाराष्ट्र शासन आत्मा आणि रेडिओ वत्सगुण द्वारा प्रसारित कृषि कार्यक्रम श्रृंखला ऐकत रहा रेडिओ वत्सगुण 90.8 FM वर आवाज वाशिमचा वाशिमचा
1: ट्यून इन एनीवेअर रेडिओ मन भवन 90.8 FM ऑलवेज एट टचिंग.
2: नमस्कार दोस्तों, 90.8 FM रेडियो मन भवन पर मैं हूं आपका दोस्त मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो. दोस्तों, अब तक हमने गुरु के ज्ञान और उनके कड़े अनुशासन की बात की, लेकिन ज्ञान जब तक प्रेम में न भीगे तब तक वह रूखा होता है. कबीर कहते हैं कि जब गुरु की असीम कृपा होती है तो वह किसी उपदेश की तरह नहीं बल्कि प्रेम की वर्षा की तरह बरसती हैं. आज का दोहा इसी प्रेम की फुहार और उसके बाद भीगने वाले उस आनंद के बारे में है. श्रोताओं, हम सब प्यासे हैं, शांति के प्यासे, आनंद के प्यासे. कबीर आज बता रहे हैं कि वह प्यास कैसे बुझती हैं. जब भीतर की तैयारी पूरी होती है तो ऊपर से वह बादल बरसता है जिसका इंतजार हर साधक को रहता है. कबीर, बादल प्रेम का हम पर बरसा आई, अंतरी भीगी आत्मा हरी भई बन राई. कबीर, बादल प्रेम का हम पर बरसाए,

0: टाइम। इस दोहे में परमानंद का दर्शन है। कबीर कहते हैं, कबीर बादल प्रेम का, परमात्मा का प्रेम, गुरु का स्नेह एक बादल की तरह है जो बिना किसी भेदभाव के बरसता है। जब वह प्रेम हम पर बरसा आई, यानी मुझ पर बरसा, तो उसका असर क्या हुआ? अंतरी भीगी आत्मा, सिर्फ शरीर नहीं, सिर्फ बुद्धि नहीं, बल्कि मेरी आत्मा भीतर तक भीग गई। जब तक आत्मा प्रेम के रस में नहीं भीगती, तब तक जीवन में शुष्कता बनी रहती हैं, और जैसे ही यह रसमय होती हैं, हरी भई बनराई, मेरे भीतर की पूरी बनराई यानी रुतियों का उपवन हरा भरा हो उठा। इसका गहरा अर्थ यह है कि जो विकार सूखे पड़े थे, जो मन उदास था, वह प्रेम की उस एक वर्षा से खिल उठा। जैसे पहली बारिश के बाद धरती से सौंधी खुशबू आती है और चारों तरफ हरियाली छा जाती है, वैसे ही सुमिरन और प्रेम के मेल से साधक का पूरा व्यक्तित्व महक उठता है। कबीर यहाँ समझा रहे हैं कि आत्मा केवल त्याग और तपस्या नहीं है। कबीर यहाँ समझा रहे हैं कि अध्यात्म केवल त्याग और तपस्या नहीं है, यह तो प्रेम में अकंठ भीगने का उत्सव है। दोस्तों, क्या आपने कभी उस प्रेम को महसूस किया है जिसमें भीगने के बाद कोई शिकायत बाकी नहीं रहती, जहाँ मैं मिट जाता है और केवल आनंद बचता है? आज कोशिश कीजिए अपने भीतर की उस बंजर जमीन को प्रेम के दो घूंट पिलाने की। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम राम।
1: नमस्कार, मी आहे पुष्कर श्रोत्री आणि आपण ट्यून केला आहे रेडिओ मन भावन 90.8 FM ऑलवेज
2: पाथगत। आफ्टर द डेव्हलपमेंट ऑफ 10 कॅरेक्टर्स युनायटेड इनएविटेबल आस्पेक्ट्स ग्रीड, इग्नोरन्स, मर्डर, रात, ॲडल्ट्री अँड लाईज। यू सेड दीज अटॅक cause destruction of the base of individual purity. Hence, men be kind to each other, include Arya Ashtangik path with the development of 10 characters in life. Man must love man, but beyond love, man must develop friendship with man. Friendship is comprehensive, more contact rather than love. Friendship makes aware of fraternity. It is not just confined to human beings. Virtuous man needs wisdom, intellect, conscience. For conduct, good deeds done blindly can be said, it is not appropriate. The path of virtuous may pass the test of wisdom and awareness of conscience. Baat tagata. Once someone asked you, who is the inheritor of Dhamma after you? You said, subjectivity is an obstacle in the way of Dhamma. Be the guardian of Dhamma. Dhamma means morals. Dhamma means thought. Dhamma means character building. Dhamma means polite progress of life. You gave the message to follow Dhamma, and very clearly you said, I am your guide, not the giver of salvation. Many religious pioneers call themselves enlightened. Many said, I am your creator, worship me and get salvation to your soul. Someone said, I am the God and I am everything. Somewhat said, I am the son of the God. And some other said, I am the prophet, messenger. But you rejected theism, illusory rituals, any rational and false statement. You said, there exists nothing like this. Salvation or amelioration aren't in anyone's hand. One has to ameliorate oneself through knowledge, character, development, conduct. By becoming wise, by following the path of Atta Deepa Bhava, you said, I am your guide. I will show you the path towards Nibbana. But the decision of following the path and the actual journey are to be done by your own. Contentment, bliss and neutrality aren't gained by the blessing of others. For that, we have to proceed on the path of rationality, character, determination. Bhatatagata, you said, Nibbans means blessedness. Blessedness is in nothing as it is in Nibbana. In all the theories, Nibbana is the central one. What is this Nibbana? Before you, some people attempted to call Nibbana as salvation. Previously, four types of salvation was regarded. The first one was eating, drinking, and merrymaking. Its nature is materialistic. The second one was yogic. The third one was Brahmani. And the fourth one was related to Upanishads. For Nibbana concept, Brahmani and Upanishadic are similar. These ideas referred to the existence of the soul as an independent entity. But Tathagata, you condemn these theories. You proved how vain is that arrangement. You refuted that teaching. Nibbana in material sense means satisfaction of the senses. Due to satisfaction of the senses, slightest of spirituality isn't possible. Because of them, the well-being of human beings cannot be attained. Materialism cannot attain the path of Nibbana.
3: Hi, me Arjaswara. Apan tune gele Radio Manbhavan 90.8 FM, always heart touching.
4: Namaskar, Om Shanti. Vishvasvadharme Surya Paho. Duritanse Timirazavo, Vishvasvadharme Surya Paho. पिछले एपिसोड में हमने विश्व के बारे में चिंतन किया, चर्चा की. विश्व क्या है, लिमिटेड टू अनलिमिटेड, उसके ऊपर भी चर्चा की. ग्रह, नवग्रह जो है उनके बारे में कथा भी सुनी. अभी हम चिंतन करेंगे स्वधर्म में. यह स्वधर्म में जो शब्द है बहुत आकर्षक है, चिंतनीय है. और मेन कैच जो हम कहते हैं वो मुझे लगता है यह स्वधर्म में है. विश्व स्वधर्म में सूर्य, पंचलाइन जो पिछले एपिसोड में मैंने कहा था, ये पंचलाइन जो है स्वधर्म में, उसमें धर्म भी आ गया. और धर्म जो है, धर्म और कर्म हम कहते हैं ना, धर्म और कर्म. और इसलिए भगवद गीता की शुरुआत ही है जो धृतराष्ट्र पूछता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयोत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय. उसकी शुरुआत है धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र. फिर ये धर्म क्षेत्र क्या है और कुरुक्षेत्र क्या है, वो तो अलग चिंतनीय विषय है, सब्जेक्ट है, उसके ऊपर हम नहीं जाएंगे. लेकिन धर्म जो है, हम सुनते बहुत है धर्म के बारे में, और हमारी मान्यता भी कई है, अनेक धर्म हम मानते हैं. मुख्य रूप से हम चार धर्म मानते हैं. वैसे तो बहुत सारे धर्म हैं, लेकिन हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई, ऐसे मानते हैं। तो ये धर्म है और ये विश्व स्वधर्मे सूर्य पाहो, स्वधर्मे, ये जो मतलब है वो शब्द यूज किया है संत श्रेष्ठ माउली ने, उसका मतलब क्या होगा? कई लोग ऐसे समझते हैं कि ये स्वधर्म मीन्स जन्म से हमें हमारे धर्म का पालन करना है, लेकिन वो कौन सा धर्म? और धर्म और कर्म, जैसा धर्म है वैसा कर्म है, ऐसे भी सोचते हैं। और गीता में और भी एक धर्म का उल्लेख है, धर्म शब्द का प्रयोग किया है, वैसे तो बहुत जगह किया है, लेकिन जो मन को भा लेता है या मन को चिंतन करने को प्रवृत्त करता है वो है कौन सा है? जब भी धर्म की ग्लानी होती है संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे, ये जो है वो धर्म की रक्षा करने के लिए गीता में कहा गया है कि मैं युगे युगे अवतार ले लूंगा, है ना? तो ये धर्म कौन सा है? तो ये धर्म अगर धर्म संस्थापनार्थाय, ऐसा कहा है, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, ये धर्म की संस्थापना जो है यह अभिप्रेत कौन सी है? हिंदू धर्म की। यह गीता में हमारा बहुत सारे लोग मानते हैं कि हिंदू धर्म की गीता है, तो ये भगवान श्री कृष्ण ने, जो मानते हैं हम गीता भगवान श्री कृष्ण ने सुनाई, तब भगवान को ये अभिप्रेत है कि संभवामि युगे युगे, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, ये धर्म संस्थापना जो है वो हिंदू धर्म की है या और कोई धर्म की, इसके ऊपर हमें रियली गहन चिंतन करना पड़ेगा, क्योंकि हम बहुत बार गलत फहमी में रहते हैं और इसलिए सोचते हैं कि यह गीता सिर्फ हिंदुओं की है, और बाद में बहुत सारे लोग हैं, गीता का अगर आपने विस्तृत तरीके से अभ्यास करेंगे तो आपको पता चलेगा कि नॉट ओनली इन इंडिया, सारे जगत में उसका अभ्यास हुआ है और उसको मान्यता भी है। तो ये धर्म जो है वो हिंदू धर्म से भी कुछ हटके है, और फिर भी माउली ने और एक शब्द यूज किया, धर्म, सिर्फ धर्म नहीं, विश्व स्वधर्म में, तो स्वधर्म मीन्स खुद का धर्म, खुद मीन्स कौन? मैं, मेरा धर्म, फिर मैं कौन? इसके ऊपर बहुत अच्छी एक कथा है, छोटी सी शेयर करेंगे आपसे, विवेकानंद जी की कथा सुनाते हैं। वो रामकृष्ण परमहंस उनके आश्रम में गए थे, बाहर से उन्होंने दरवाजा नॉक किया, तो रामकृष्ण जी परमहंस जो थे उन्होंने पूछा कि कौन? तो विवेकानंद जी तो दरवाजे के बाहर खड़े थे, उन्होंने कहा मैं। तो फिर रामकृष्ण जी ने पूछा मैं कौन? विवेकानंद जी का जवाब बहुत अच्छा था, उन्होंने कहा मैं कौन, यही तो जानने के लिए मैं आपके पास आया हूं गुरुवर। तो ये मन मैं जो है, ये जब पता चलेगा तो स्वधर्म का पता चलेगा, और इसलिए कहते हैं ये विश्व स्वधर्मे, स्वधर्मे, मेरा धर्म। और मेरा जो धर्म है, मैं पहले कौन? तो मैं एक आत्मा हूं, और ये मेरे आत्मा का धर्म जो है वो है शांति। तो स्वधर्म जो है वो है शांति, और इसलिए ये शांति कब मिलेगी? जब पवित्रता आएगी। और ये इसलिए बोलते हैं कि ये देखो शांति, हम कहते हैं, हम आत्मा की बात कहते हैं तो बोलते हैं कि आत्मा परमात्मा की बात मत करो, हम मानते ही नहीं आत्मा है, परमात्मा है ये भी नहीं मानते। तो ये आत्मा और परमात्मा की बात नहीं है। हम बातें बहुत करते हैं लेकिन उसकी जड़ तक नहीं जाते। देखिए, अगर कोई मरता है तो हम क्या कहते हैं, परमात्मा उस आत्मा को शांति दे, या उस आत्मा के लिए शांति का दान दे, इस ऐसी सद्भावना रखते, उसको सदगति मिले, उसे शांति मिले। मीन्स पहले नहीं थी, हम जब जिंदा है तब आत्मा को शांति नहीं थी। और कभी कभी ऐसा ही लगता है, क्योंकि देखो अगर हम बहुत परेशान हो जाते हैं, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, गणपति है, वहां विसर्जन है, बहुत बैंड बाजा, बहुत शोर शराबा होता है, डीजे आजकल बोलते हैं ना, बहुत बड़ा धमाका हो जाता है आवाज। आप 2-3 घंटा वहां खड़े रहो, कान पक जाएंगे, और फिर जब घर पे आएंगे बोलतेंगे, हाँ यहाँ कितना अच्छा लगता है, शांति लगती है। तो ये शांति जो है वो अच्छी लगती है, लगती है ना, क्यों अच्छी लगती है, इसलिए बोलते हम ओरिजिनल स्टेज पे आ जाते हैं, ओरिजिनल स्टेट पे आ जाते हैं। अशांति आदमी को अच्छी नहीं लगती, आदमी कोई भी व्यक्ति को अशांति अच्छी नहीं लगती, भले थोड़े देर के लिए वो सह लेता है, या कोई गलत फहमी से उसको लगता है कि यह अशांति अच्छी है, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसे वो अच्छी नहीं लगती और शांति अच्छी लगती है। इसलिए बोलते हैं शांतिपूर्ण, शांतता। और हमारा भारत देश भी ऐसे मान्यता है कि शांतिपूर्ण है। तो ये शांति जो है वो कब आएगी, मन अशांत है तो गड़बड़ है, और मन शांत है तो अच्छा है। और ये शांति जब आती है, जब मन में पवित्रता हो। पानी का उदाहरण लेते हैं कि पानी में अगर कोई डस्ट पार्टिकल्स है तो पानी को स्थिर कर दो तो पानी ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। वैसे अगर मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, स्वधर्म मेरा जो है वो शांत है, लेकिन अगर वो शांति नहीं है तब मैं अशांत हूं, और फिर उसका परिवर्तन, उसका परिणाम दुख में हो जाता है। और इसलिए शांति हमेशा अच्छी लगती है। और ये विश्व स्वधर्म में जो मुझे लगता है, आप भी उसके ऊपर चिंतन करो, आप ज्ञानी हो, आप पढ़े लिखे हो, आपने काफी मेरे से भी शायद ज्यादा पढ़ा है, तो उसके ऊपर मेरा ये जो प्रयोजन है आपके साथ शेयर करने का, ये नहीं है, ठोपना नहीं है आपके ऊपर कि यही मैं कह रहा हूं वही सही है, आपके विचारों को दिशा देने का ये प्रयास है। और ये प्रयास सक्सेसफुल होगा अगर आप उसके ऊपर चिंतन करेंगे, कुछ सोचेंगे, और फिर आपको जैसा लगे वैसा है। तो ये स्वधर्म के ऊपर मुझे ऐसा जो चिंतन था वो आपके सामने पेश किया है। अभी सूर्य जो है, सूर्य, उसके ऊपर अगली कड़ी में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार, ओम शांति।
3: ट्यून इन एनीवेयर, रेडियो मन भवन 90.8 FM।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत। जब पीछे मुड़कर देखा, पास्ट को जब भी देखते हैं, तो ना चाहते हुए भी वो सारी बातें हमें याद आ जाती हैं, या फिर हम जीवन में जब चल रहे होते हैं, कभी भी अचानक अनजाने ही पास्ट की बातें ट्रिगर हो जाती हैं, और फिर जहां हम खड़े हैं वो पास्ट ही हमारा प्रेजेंट बनने लगता है। अगर पिछली कड़ी आपको याद हो तो हमने बात की थी कि कैसे हमारा पूरा गुजरा हुआ कल आज भी, तभी हम कहते हैं कि हिस्ट्री रिपीट्स, क्योंकि मैंने ही उसे अपना प्रेजेंट बना लिया तो फिर वही तो आगे सामने आएगा। हमने एक मुद्दे पर बात करनी चाही थी और वो था जब किसी लव्ड वन की, किसी करीबी की, जो अपनी देह छोड़ देते हैं, वो नहीं रहते जीवन में, या फिर कहीं कोई ऐसा अपना होता है जो छूट जाता है, कहीं और चला जाता है। तो ऐसे दो एक्सपीरियंस हैं जो कि जिनसे पार पा पाना, या जो वो बार बार अनजाने ही आते हैं, उन्हें कैसे हैंडल करना है, और इस पर बात करते हैं। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी। अगर पास्ट की हम बात कर रहे थे तो कई अनुभव तो छोटे छोटे होते हैं जिसको करके कि हम हैं, और खुद ही अपने आप को हील करना, ये हमने समझा, ना हम किसी और को बदलेंगे ना सिचुएशन बदलेगी, और वो गुजर गया, ख़त्म हुआ। लेकिन कुछ सिचुएशंस, जैसे कि कोई हमारा बहुत करीबी और उसकी डेथ हुई, वो आज भी उतना ही बड़ा घाव है, और हमने किसी तरह से अपने आप को कवर अप किया है। मतलब इतने लोग इतना समझाते हैं, इतनी बातें करते हैं, कवर अप कर लेते हैं, नॉर्मल जिंदगी भी जी रहे हैं, सबके साथ भी जी रहे हैं, काम पर भी है, लेकिन वो खाव तो भरता नहीं है।
1: डेफिनेटली आई थिंक जीवन में हमें बहुत सारे, जैसे हम शुरू से देख रहे हैं, उतार चढ़ाव देखने, लेकिन ये जो एक परिस्थिति होती है, डेथ ऑफ अ फैमिली मेम्बर और अ क्लोज फ्रेंड, ये शायद जीवन का सबसे बड़ा एग्जाम पेपर होता है, जिसमें तो हमने कहा कि दर्द तो नेचुरल ही है, वी नेवर एवर थॉट के कोई और ऑप्शन भी है। यस, इट्स अ वेरी बिग चैलेंज जीवन में, वो सिचुएशन है जिसको पार करने के लिए बहुत ताकत चाहिए, लेकिन इसमें भी अगर हमें राइट नॉलेज है, विजडम है, और फिर साथ साथ पावर भी है, तो इसको भी हम क्रॉस कर सकते हैं। सबसे पहली बात हम देखते कि उसमें भी अगर हम देखें कि जब हमारा बच्चा, बिकॉज आई हैव मेट अ लॉट ऑफ पीपल इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, लेकिन उसमें भी अगर किसी के बच्चे की डेथ हुई है, यंग अनटाइमली डेथ, तो शायद उसको पेरेंट्स के लिए फेस करना बहुत डिफिकल्ट होता, और वो अपने आप को ये कह ही देते कि बाकी पूरी जीवन तो दर्द में ही बीतनी है, यहाँ तक कि वो दर्द इतना ओवरपावर कर जाता कि कहते हमें जीना ही नहीं है, हमारे जीने का कोई पर्पस नहीं है। उनको अब जो प्रेजेंट फैमिली मेंबर्स हैं वो कोई नहीं दिखाई देते, उनका कुछ नहीं लग रहा, बस वो एक उसमें ही इतने दर्द में चले गए हैं कि कहते आई डोंट वांट टू लिव एनीमोर, आई लॉस्ट माय पर्पस ऑफ लिविंग। ऐसे समय में भी हम अपना ध्यान कैसे रखें, बिकॉज हमारा पूरा जो बात है वो यही कि अपना ध्यान कैसे रखना, क्योंकि अब तो वो जिसका हम ध्यान रख रहे थे
0: वो भी नहीं रहा,
1: वो नहीं है, तो वो दर्द में अब मुझे अपना ध्यान कैसे रखना,
0: अब मैं ध्यान अपना रखना ही नहीं चाहती। You know, like that is what I'm saying. Ki it like I don't want to live. I don't want to do anything. You know, and उसके बावजूद भी मैं करती हूँ, उठता हूँ, काम करती हूँ और चीजें करती हूँ।
1: राजयोग में जो सबसे fundamental बात जो हमें समझ में आती कि मैं कौन हूँ, ये एक fundamental realization है जो हमारे सारा perspective change कर देती कि ये शरीर है, नाम है, परिवार है, रोल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, लेकिन इन सब के लिए हमने कहा मेरा, यू नो, मेरा नाम ये है, मेरा प्रोफेशन ये है, ये मेरे रिश्ते हैं। शरीर के लिए भी हमने कहा मेरी आंखें, मेरा कान, मेरा शरीर, आज मेरा शरीर बहुत दर्द हो रहा है, तो ये सब कुछ मेरा मेरा कहने वाला वो मैं कौन, तो वो हमें समझ में आता कि वो एनर्जी है जिसको हम कॉन्शियसनेस कहते, चैतन्यता जिसको कहते, द लिविंग, द बीइंग पार्ट, क्योंकि हम कहते हैं हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो वी आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू एंटिटीज, वन इज द बॉडी, द ह्यूमन, जो ह्यूमस वर्ड से निकलता मिट्टी, एंड बीइंग इज एनर्जी, कॉन्शियसनेस, तो ये जो बॉडी है ये मेरी है, और मैं कौन, वो शक्ति। जब हमें समझ में आता कि आई एम एनर्जी, देन आई ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड nor be destroyed. So it is eternal. जब ये समझ में आता तो देन आई अंडरस्टैंड कि मैं वो चैतन्य शक्ति जिसको स्पिरिचुअल लैंग्वेज में हम आत्मा कहते, सोल कहते, स्पिरिट कहते, मैं इटर्नल हूँ. तो डेथ किसकी होती है? क्योंकि पूरा जीवन हम मृत्यु के भय में जीते हैं. लेकिन जब मुझे समझ में आता कि मैं तो इटर्नल हूँ, आज दिन तक भी हम सुनते आए आत्मा अजर अमर अविनाशी है, जो जल नहीं सकता, जो मर नहीं सकता, जिसका विनाश नहीं हो सकता. आई एम इटर्नल एंड सो इज एवरी सोल. सो एवरी सोल इज इटर्नल. तो मृत्यु का कॉन्सेप्ट क्या है? व्हाट इज डेथ? इज व्हेन आई द सोल लीव वन कॉस्ट्यूम, वन सेट ऑफ रिलेशनशिप्स, वन पर्टिकुलर सीन, एंड देन आई हैव टू शिफ्ट. तो अब हम अगर इसको देखें कि डेथ मीन्स के वो आत्मा एक, क्योंकि वी आर सीइंग डेथ ऑफ अ फैमिली मेम्बर, वो आत्मा जो कल तक मेरे साथ थी, उसका मेरे साथ एक जिसको हम कहें कार्मिक अकाउंट था. हम कहाँ आते हैं? बर्थ और डेथ कैसे डिसाइड होता है? कई लोग बोलते हैं कौन डिसाइड करेगा कहाँ जन्म हुआ और कब तक उस शरीर में रहना और फिर कब वहाँ से चलना है. इट इज़ बेस्ड ऑन माई कार्मिक कनेक्शंस. हम जिस परिवार में हमारा जन्म होता, जिन लोगों के हम कनेक्शन में आते, इट इज़ बिकॉज उन आत्माओं के साथ मुझ आत्मा का कार्मिक कनेक्शन है, जिसको हम कहें एनर्जी के लेन देन है. दिस इज़ बेस्ड ऑन माई पास्ट कार्मिक कनेक्शंस. तो जिन आत्माओं के साथ हम आज हैं, हम पहले भी उनके साथ कभी थे. जब हम उनके साथ पहले थे, हमारा एक पर्टिकुलर अकाउंट क्रिएट हुआ था. अब हम फिर उनको मिलते, फिर हमारा एक अकाउंट है. लेकिन जैसे ही अब मेरा ये अकाउंट जो था वो सेटल हो जाता, आई हैव टू लीव. आई कैन नॉट स्टे वन मिनट मोर आफ्टर दैट. तो जब हमें ये समझ में आता वो आत्मा मेरे कॉन्टैक्ट में आई फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, for settling a particular account, उसके बाद the soul cannot be in my contact anymore, क्योंकि उसका वो account finish हो गया and it has to go somewhere else, जहाँ उनका एक
0: नया account
1: है. वो soul अपनी journey पे है. You know, it's like एक train में हम जा रहे हैं, हम सब अपनी अपनी journey पर हैं. ऐसा नहीं होगा कि सब लोग एक ही station से चढ़ें और सब लोग एक ही station पे उतरे. हर एक की journey अलग अलग है. तो हर एक का बोर्डिंग पॉइंट वो भी अलग अलग है, हर एक का उतरने का स्थान वो भी अलग अलग है, क्योंकि हर एक अपनी अपनी यात्रा पर है.
0: But I didn't want to finish this account. See?
1: No, it's not about I wanting to finish this account. I'm not talking about my account. It's about the other soul's account. अगर आपका अकाउंट मेरे साथ चार दिन का है, तो उसके बाद आपने पांचवें दिन दूसरी जगह जाना ही जाना है, क्योंकि पांचवें दिन आपका कनेक्शन दूसरी जगह. लेट्स से आप हफ्ते में तीन दिन हमारे साथ शूट करते हैं, लेकिन चौथे दिन आपको कहीं और शूट पे जाना है. आपकी वो कमिटमेंट है. अब मैं को तीन दिन आपके साथ बहुत अच्छा लगा, मैं सोचूं चौथे दिन भी आप यहीं आ जाएं, तो मेरे चाहने से आप यहाँ नहीं आ सकते हैं, क्योंकि आपका कमिटमेंट अब चौथे दिन कहीं और है. अब मैं जो यहाँ पीछे बैठी, आप तो चले गए कहीं और, अब मेरे पास चॉइस है कि मैं इसको एक्सेप्ट करूं कि आपका कमिटमेंट आपका अकाउंट कोई और है, या मैं दर्द में रहूं कि वो क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है आज मेरे
0: साथ. सबसे बड़ी बात ये भी, फिर ये भी रहता है कि तो इसका मतलब उनको जब वो चले गए हम याद ही नहीं रहते, यू नो, बिकॉज कमिटमेंट पूरा हुआ.
1: हम उनको याद नहीं रहते, ये उनके लिए अच्छा है ना एक्चुअली. अगर हम एक पल के लिए देखें, आई मेट वन मदर जिनका 21 साल का बेटा ने एक्सीडेंट में डेथ हुई. तो वो बहुत अच्छा पास्ट का अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे. बेटा दूसरे देश में था, तो कहा हमारा इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था कि यहाँ अगर मैं अपसेट होती उसको वहाँ पता चलता, या उसके साथ कुछ होता तो मुझे यहाँ, इतना जैसे हमारा यू नो वो बॉन्डिंग था. तो कहते हम तुरंत फोन करते एक दूसरे को, सब ठीक है, कुछ हुआ है? एंड शी सेड इनवेरिएबली वी वर राइट कि दूसरे के साथ कुछ ना कुछ हुआ था. तो इतना हमारा कनेक्शन. अब वो बच्चा, वो आत्मा कहीं और चली गई है. ये मदर बहुत रोती है, रोज रोती है इतना. तो आई जस्ट आस्क्ड हर वन थिंग. आई सेड कल तक आपका और उस आत्मा का इतना कनेक्शन था ना कि आपकी एक थॉट उधर तक पहुंचती, उसकी एक थॉट आप तक पहुंचती. अब वो आत्मा का कॉस्ट्यूम चेंज हो गया है. सी व्हाट वी से, इट्स ओवर, इट्स डेथ, इट्स फिनिश्ड. नो, इट्स जस्ट द सोल हैज चेंज्ड अनदर कॉस्ट्यूम. लेकिन क्या वो कनेक्शन फिनिश हो गया होगा? क्या वो एनर्जी एक्सचेंज फिनिश हो गया होगा? अगर आप आज कहीं और भी चले गए, क्या आपको भूल गए? आपको याद नहीं आएगी? आएगी. अब क्या होगा? लेकिन पहले वो दूसरे देश में था, उसको अगर याद आता या उसको कैच होता, ही कुड कॉल. एक मिनट के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड, क्रिएट द सीन इन फ्रंट ऑफ यू कि वो आत्मा अब एक दूसरे शरीर में है, प्रोबेबली इन द वूम्ब ऑफ द मदर और अ वेरी लिटिल बेबी, जस्ट कैन नॉट कॉल यू बैक.
0: But will he remember? It's not the remembrance.
1: It is not remembrance. It's शुरू में तो remembrance है.
0: हाँ.
1: एक आत्मा जब उस शरीर में है, आप देखो एक बच्चे को शुरू में सारा पास्ट याद होता है.
0: It's like कभी
1: वो हंसता है, कभी वो रोता है. क्या? क्योंकि नेचर है ना, जैसे हमें पास्ट भूलता जाता है, तो नेचर बहुत सुंदर ऐसे बनी हुई है प्रकृति कि जैसे जैसे बच्चा बोलने की स्टेज पर आता, दो तीन चार साल, तीन साल तो हो जाते, तब तक उसको पास्ट भूल जाता क्योंकि प्रेजेंट की इंफॉर्मेशन लेयर उसके ऊपर सारी कोड होते जाते. तो कई बच्चे ऐसे मिलते हैं ना जिनको पास्ट याद होता. तो वो किस एज में होते हैं? वो 19, 20, 25 की एज में नहीं होता कभी भी.
0: 5, 6, 7.
1: क्यों? क्योंकि मेमोरी पावर बहुत स्ट्रांग थी कि वो जो बात दो तीन साल तक भूल जानी चाहिए थी वो 4, 5, 6 साल तक भी याद है और वो उसका वर्णन फिर करना शुरू करते. लेकिन जब वो आत्मा माँ के गर्भ में है, वो तो अभी अभी आई है, या वो एक एकदम छोटा बच्चा, वो तो अभी उसको सब याद है, सारा कुछ याद है, और वो पास्ट को याद करके ही रोता और हंसता है. बच्चा कभी भी प्रेजेंट से बहुत ज्यादा कनेक्टेड नहीं है. हम हॉस्पिटल में बच्चे

0: अभी भी करेगा। यहाँ आप इतना रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं, किसको याद करके रो रहे हैं? उसको याद करके रो रहे हैं। लॉ ऑफ एनर्जी
1: किस बॉडी में था? किसी और कॉस्ट्यूम में था।
0: पर कॉस्ट्यूम को नहीं हम याद करते ना, एनर्जी का जो एक्सचेंज है वो कॉस्ट्यूम और कॉस्ट्यूम के बीच नहीं, वो आत्मा और आत्मा के बीच है। दैट्स व्हाट वी सेड इज रिलेशनशिप। अब जब हम रो रहे हैं, हम पेन की एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, एनर्जी ट्रैवल करने वाले हैं। कहाँ ट्रैवल करेंगे?
1: उसी पे जाएगी,
0: उस आत्मा के प्रति जिसके लिए वो क्रिएट की गई है। सो यस, इट इज वेरी डिफिकल्ट। यस, हम नहीं इस, हम कहते हैं हम इस दर्द से नहीं निकल सकते, लेकिन अगर हम अपने आप को प्यार से और लॉजिकली समझाएंगे कि जब वो आत्मा यहाँ थे तो मैं चाहे कुछ भी हो जाता उसको दर्द ना होने देती, मैं कुछ भी कर जाती उसको अपने दर्द से दूर करने के लिए, और आज मैं ही बैठकर क्या भेज रही हूँ, मैं दर्द भेजते जा रहे हूँ, भेजते सिर्फ इसलिए क्योंकि अब वो मेरे सामने नहीं है तो मुझे पता नहीं चल रहा, तो मेरे ऊपर उसका फर्क नहीं पड़ रहा। इफ आई हैव द रियलाइजेशन दैट ऑल दिस पेन दैट आई एम क्रिएटिंग इज गोइंग टू दैट सोल, आई विल स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ। अपने लिए नहीं ध्यान रखना चाहते ना, ठीक है, वी से मुझे नहीं ध्यान रखना अपना, आई डोंट वॉन्ट टू बी फ्री ऑफ पेन, अपने लिए नहीं, उनके लिए सही,
1: जिसके लिए हम जीवन भर वैसे ही करते आए हैं,
0: जिनके लिए, जो हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट थे, उनको इतना दर्द पहुंच रहा है। अच्छा, बच्चा अगर थोड़ा बड़ा होता जाता वो हमें याद नहीं रख, वो याद नहीं करता, भूल जाता है, लेकिन एनर्जी जो हम भेज रहे हैं वो एनर्जी वो फिर भी रिसीव करता है। एनर्जी ऐसी चीज है, आप जिसके प्रति क्रिएट करो इट इज ट्रैवलिंग टू दैट पर्सन।
1: तो मतलब इसका मतलब वो जो सोल जिसने जहाँ जन्म लिया जो भी है उस तक वो वाइब्रेशंस तो पहुंच रहे हैं।
0: ऑलवेज ऑलवेज ऑफ कोर्स, सी इट्स लाइक दिस, आप मेरे लिए जो भी एनर्जी क्रिएट करोगे
1: तो देन अननोइंगली
0: आई एम सेंडिंग सो मच पेन।
1: यस, और वो पेन में चला जाता होगा बच्चा, मतलब वो जहां पे भी होगा।
0: सी हाउ इट हैपेंस, क्योंकि हमारे अंदर आज इतनी ताकत नहीं है कि हम अपने आप की प्रोटेक्शन कर सके। हमने यही देखा ना, आपने दर्द भेजा तो मेरे भी दर्द में चली जाते हो, अनलेस आई वर्क वेरी हार्ड ऑन माई सेल्फ कि आपकी एनर्जी औरों की एनर्जी मुझ पर इन्फ्लुएंस नहीं करे। लेकिन मोस्ट ऑफ अस आर नॉट डूइंग दैट वर्क, तो मोस्ट ऑफ अस आर गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाटएवर एनर्जी इज बीइंग सेंट टू अस। तो जब हम उन सब लोगों की एनर्जी से इन्फ्लुएंस होते जो हमारे आसपास है, अगर कोई कहीं और भी है लेकिन वो जो एनर्जी भेज रहे हैं उसका भी इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर,
1: और उस बच्चे को तो ये पता भी नहीं चलेगा ना, बिकॉज वो सामने हो तब हमें समझ में आता है कि इसकी एनर्जी ये आ रही है, वो उसका ये आ रहा है, लेकिन वो तो द चाइल्ड वोंट बी इवन नोइंग कि वो कहां से आ
0: रही है। दैट्स बिकॉज़ वी आर रिसीविंग अ लॉट ऑफ एनर्जी ऑफ पेन। तो एज अ पेरेंट, एज अ हस्बैंड वाइफ, जो भी हम हैं यहाँ पर, हमें मालूम है, हम अपने आप को तो ये कह देते कि हमें खुश रहने का कोई हक नहीं है, हम रहना नहीं चाहते खुश। यू नो, पीपल से आई डोंट वांट टू बी हैप्पी, इट्स नॉट अबाउट बीइंग हैप्पी। यस, यू डोंट वांट टू बी हैप्पी, बट हैप्पी इज नॉट एक्साइटमेंट, इट्स अबाउट बीइंग स्टेबल, इट्स अबाउट बीइंग पेन फ्री, दैट्स ऑल। क्योंकि अब आप जितनी बार दर्द क्रिएट करेंगे अपने को तो देंगे ही, उनको भी भेजेंगे। देखो, अगर बच्चा कहीं और है, देखो नॉर्मल में कैसे होता, अगर बच्चा कहीं और है और वो हमें फोन करता दूसरे शहर से, कहता सब कुछ ठीक है घर पे, तो हम क्या कहते? हाँ हाँ,
1: सब ठीक है,
0: सब ठीक है। यहाँ पर हो सकता 10 प्रॉब्लम हो आज, हम बच्चे को कभी नहीं बताते, या जो भी हस्बैंड वाइफ पे गए हो हम बताते नहीं। व्हाट इज द इंटेंशन? दूसरा जहाँ है वहाँ वो सेट हो जाए। अगर हम यहाँ की बात उसको बताते रहेंगे सारा, वो वहां सेट कैसे होगा? सिमिलरली आत्मा दूसरी जगह है, हमारा प्योर इंटेंशन क्या होना चाहिए? वो वहां पर सेट हो जाए। हम रोज पता है क्या मैसेज भेजते हैं?
1: हम सेट नहीं होने दे, बिकॉज हमारा, इट मींस वी आर एक्चुअली बीइंग लिटिल सेल्फिश। I don't want to say that, but
0: because we're thinking only about ourselves, yes, no, yeah. We're not thinking about them. Why we were not able to think about them? Because we thought they are gone.
1: Haan.
0: You know, जहाँ हमने कहा they are gone, तो फिर हमें यही नहीं था कि वो अभी हैं। हमने कहा वो तो चले गए।
1: वो मेरी ज़िंदगी से तो पर चले गए ना, ये बड़ा दुख है।
0: लेकिन
1: वो कहीं तो है
0: ना। सिमिलरली अगर बच्चा दूसरे शहर में, वो यहाँ नहीं है,
1: लेकिन एक्सेप्टेड, यू नो, लाइक ये मैं मान ही नहीं पाती हूँ, बिकॉज ये इतने कंफ्यूजन्स और डेथ के बाद क्या होता है क्या नहीं होता, इसको लेके इतने सारे बिलीफ सिस्टम्स हैं, ये इतना सब कुछ है, तो ये मैं कैसे एक्सेप्ट कर लूँ कि वो है?
0: जब हमें ये समझ में आ गया कि हम आत्मा है, और ये हमें समझ में आ गया कि आत्मा का विनाश नहीं होता, तो फिर तो वो है ना। विनाश नहीं हो सकता ना, एनर्जी कैन नॉट बी फिनिश्ड, सो इट इज देयर। व्हाट डज एनर्जी डू? इट जस्ट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, सो वन कॉस्ट्यूम टू अनदर, वो है।
1: लेकिन यहाँ एक बात मैं यहाँ पे करना

0: चाहती हूँ कि इससे जुड़ी इतनी कन्फ्यूजन्स हैं कि हम फिर ना कई कई और चीजों में चले जाते हैं। उसने शरीर लिया कि नहीं लिया, वो यही है कि नहीं है, और कई बार हम कुछ और
1: उनसे कनेक्ट करने की भी
0: कोशिश करते हैं। इज इट राइट?
1: इट इज अगेन सी राइट एंड रॉन्ग अगेन। जितना हम उसको यहाँ खींचने, देखो एक तो है हम असंभव करने की कोशिश, या तो हमारे कुछ भी करने से अगर वो वापस इस कॉस्ट्यूम में आ सकते, गो एंड डू व्हाट एवर यू वांट, वो तो होने नहीं वाला है। लेकिन अगर हम बार बार यहाँ कनेक्ट करना, मेरे से यू नो बहुत सारे आजकल टेक्निक्स फॉलो कर, क्या क्या, कम्युनिकेट विद हिम, आई कैन कनेक्ट विद हिम, जब वो यहाँ आ नहीं सकते हमें उनको क्या करने देना है? जितने बच्चे हैं जिनको अपना पास्ट बर्थ याद आ जाता है, यू नो हाउ अनकम्फर्टेबल दे बिकम, वो यहाँ है 5 साल के, याद उनको आ गया कुछ पास्ट का, ये उनका प्रेजेंट है, प्रेजेंट को वो छोड़ नहीं सकते, लेकिन वो प्रेजेंट और पास्ट के बीच में खींचते जाते, एंड दैट इज वाई इट्स लॉ ऑफ नेचर कि हमें वो पास्ट बर्थ भूल जाना चाहिए, क्योंकि जिसको नहीं भूलता वो बहुत कॉन्फ्लिक्ट में चलता है। तो इसी तरह वो आत्मा दूसरी जगह चली गई, लेट इट सेटल। अगर हम उसको इस तरह से अलग अलग तरह से खींचने की कोशिश करें,
0: सेटलमेंट नहीं होगा,
1: नहीं होगा ना। इट इज लाइक सपोज बच्चा दूसरे शहर में है और हम उसको फोन करके बोले वापिस आ जाओ, तुम्हारे बिना तो हमारा कुछ नहीं हो रहा, तुम्हारे बिना हमारा मन नहीं लग रहा, हम ऐसा बोलेंगे कभी? हम कहेंगे नहीं सब ठीक है, आप वहीं रहो। सिमिलरली आत्मा कहीं और चली गई है दूसरी जगह, हम थॉट्स क्या क्रिएट करते, क्यों छोड़ के चले गए, तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकती, मुझे जीना ही नहीं है,
0: कुछ भी करके लौट आओ, यू नो लाइक इट्स
1: नाउ सी नाउ इमेजिन दैट सोल देयर गेटिंग ऑल दीस थॉट्स, दीस ऑल वाइब्रेशंस, हाउ मच पेन। वो आ भी नहीं सकता, कुछ कर भी नहीं सकते, वो सिर्फ क्या करते, रिसीव करते जाते, रिसीव करते जाते इतना दर्द। तो अपने लिए नहीं, उनके लिए, उस आत्मा के लिए जो गए है, लेट्स स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ आर सेल्फ एंड ऑल्सो जो हमारे साथ अभी हैं परिवार में। ये भी एक बहुत बड़ी जो बात हो जाती, एक घर में 2-3-4 लोग हैं, एक बच्चा है, 2 बच्चे हैं, अच्छा हस्बैंड वाइफ हैं, एक नहीं है, रिश्ते में क्या दूंगी मैं दूसरे को। हम ये नहीं वैल्यू करते कि ठीक है वो आज मेरा मेंबर मेरे साथ नहीं है, लेकिन ये 1-2 लोग, दिस इज हाउ द पास्ट
0: एक्चुअली एज इंपॉर्टेंट एज दैट चाइल्ड,
1: एज इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स, इक्वली इंपॉर्टेंट। वाज इट दैट दैट पर्सन वाज इंपॉर्टेंट, द रेस्ट वर नॉट इंपॉर्टेंट, बट माय फोकस गोज ऑल टुवर्ड्स दैट वन हुज नॉट देयर, एंड इन द प्रोसेस आई निग्लेक्ट एवरीवन हु इज देयर। बहुत घरों में ये देखा जा रहा है कि हस्बैंड वाइफ के बीच का रिलेशनशिप वो दूर हो जाते हैं एक दूसरे से। जो बच्चा है आज वो निग्लेक्टेड फील कर रहा है क्योंकि पेरेंट्स क्या हैं, पूरी तरह से दर्द में चले गए हैं। तो उस बच्चे को जो उनके साथ है उसके पास कौन सी एनर्जी है देने की? घर का पूरा वायुमंडल कैसा हो गया है? दर्द में। वी हैव टू स्टॉप एंड आस्क आवरसेल्फ टिल व्हेन विल वी लेट दिस पास्ट influence my present. I cannot do anything about it except for accepting the situation.
0: What to do then? Okay, one realization hits. I just hope a lot of people watching, because this is something actually one can empathize with, you know. Samajh mein aata hai, dard bhi genuine tha. Aur ab ye realization, jab facts saamne aate hain, ki ye hai, ab aap agar apne aap par kaam karne ke liye tayar hai, to kya kare?
1: Hame ye pata hai ki याद तो आती है, यू नो हम कहें भूल जाएं उसको तो वो नहीं होता, लेकिन एक है प्यार से याद, दूसरा है दर्द से याद। नॉर्मली क्या होता है, जैसे ही याद आती तो याद इज फॉलोड बाय दर्द। कई बार लोग ये भी कहते हैं कि बहुत सारी अच्छी मेमोरीज थी, हमने बहुत अच्छा समय उनके साथ बिताया, तो वो समय को याद करके हमें अच्छा लगता है। लेकिन एक्चुअली क्या होता, जैसे ही वो अच्छे वाले सीन्स हमें याद आते, हमें उन क्षण बहुत अच्छा लगता, एंड नेक्स्ट क्षण हम दर्द में चले जाते कि अब वो सीन्स नहीं है,
0: क्योंकि अब वो नहीं है, यू नो वो पूरा वो रोना,
1: वो एक्चुअली वो अच्छा नहीं है। इट्स नॉट दैट यू क्रिएटेड हैप्पीनेस और यू क्रिएटेड लव, यू स्टिल क्रिएटेड पेन। तो ये हमें याद रखना होगा कि ये दर्द जो हम बार बार जस्टिफाइड कहकर क्रिएट कर रहे हैं, ये मेरे ऊपर तो इम्पैक्ट डाल ही रहा है, मेरे साथ अब जो आत्माएं हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट डाल रहा है, और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट
0: तो कोशिश क्या करें कि वो जो पुरानी गुड मेमोरीज हैं
1: को जब भी याद करें। नहीं, उनको जब भी याद करें, याद तो आती है, याद जब भी करें, we consciously sit and send vibrations of love. Okay, yes, I understand you're somewhere else. I wish that you settle there. And I send you vibrations of love, vibrations of... हम नहीं कहते एक मिनट उन आत्मा को शांति का दान भेजे, उस आत्मा की शांति के लिए, नहीं, हवन करते हैं, क्या करते हैं? उस आत्मा की शांति के लिए. लेकिन उस आत्मा को शांति ये सिर्फ करने से नहीं मिलेगी. वो आत्मा को शांति कब मिलेगी?
0: जब हम
1: शांत रहेंगे. हम अगेन सी हाउ वी हैव बिकम, हम शांति भेजने के लिए भी करते हैं, वी आर डूइंग थिंग्स. कुछ भी करने से शांत, अगर मैं रो रो कर हवन कर रही हूँ, हवन नहीं पहुंचेगा उधर, वो तो फिजिकल है. क्या पहुंचेगा?
0: मेरा
1: दर्द पहुंचेगा. तो उस आत्मा की शांति के लिए हमें क्या करना होगा? हमें शांत रहना पड़ेगा. दैट्स द ओनली वे. एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू एक्सेप्ट एंड लेट गो ऑफ द पास्ट. एंड जब भी याद आए, वाइब्रेशंस ऑफ लव, पीस एंड पावर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट.
0: एंड एक्चुअली हम जितना पीस, पावर और इस लव की वाइब्रेशंस भेजेंगे, वो हमसे ही होकर गुजरेंगे. तो दिस एक्चुअली वी कैन ट्राई इट आउट.
1: एक्चुअली सिचुएशन को एक्सेप्ट करना पड़ता है. दर्द क्यों क्रिएट करते हैं? हम एक्सेप्ट नहीं करते. मेरे साथ क्यों ऐसा हुआ? मेरे साथ, मुझे नहीं. हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आत्मा का मेरे साथ इतना ही समय का पाठ था, अब उनका पाठ कहीं और है. और जितना हम उनको अच्छी वाइब्रेशंस भेजेंगे, वो उस पाठ में बहुत अच्छा अपना जीवन अपने परिवार के साथ, अपने नए शरीर में, अपने नए रोल में बहुत अच्छा बिताएंगे. एंड एज अ फैमिली मेम्बर, एज अ पेरेंट, हमारी शुभ भावना हमेशा क्या होगी? कि वो बच्चा जहाँ भी है, वो वहाँ पर बहुत
0: सेटल. आई थिंक इट्स अ वंडरफुल वे टू लुक एट इट. कोई बात, कोई सवाल मन में है, आप जरूर हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर फोन पर संपर्क कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर हैं 0124-266-7000, 9999-344-555, 9999-344-666, 9873-666-555. हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दे को हमने अपने साथ लिया है. सिस्टर शिवानी, ये जो प्रोसेस है, ये बिना साइलेंस में बैठे हम नहीं अनुभव भी कर पाएंगे. तो हम चाहेंगे कि अगर आज कुछ शेयर करें.
1: सबसे पहले अपने आप को देखें. इस शरीर का मालिक, इस शरीर को भी चलाने वाली शक्ति, दैट प्योर कॉन्शियंट बीइंग शाइनिंग इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड, टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट. मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूं. आई एम अ पीसफुल बीइंग. My peace is my creation. It is not dependent on those who are with me, and it is not dependent on those who have left. I can create it right here in the present moment. And as I create it, it flows out from me. Shanti ke vibrations. मुझ आत्मा से निकल बाहर चारों तरफ फैल रहे हैं, और ये उन आत्माओं तक पहुंच रहे हैं जो आज मेरे साथ नहीं है. लेकिन संबंध तो है आत्मा का, आत्मा के साथ संबंध. और ये संबंध स्नेह, शांति और शक्ति का है. I send out vibrations of peace and love to that soul. Om Shanti.
0: Om Shanti. Thank you so much. बहुत कुछ हम अभी तक अपने दर्द के लिए करते आए हैं. आज ये प्रयास भी करके देखें और फिर देखें कि कैसा हम महसूस करते हैं. आपसे अभी विदा लेते हैं. अवेकनिंग में आगे भी बहुत सी बातें होती रहेंगी. ओम शांति.

0: 91.8 FM, always heart touching।
1: श्रोताओं नमस्कार, आज हमारे साथ है भारतीय शास्त्रीय संगीत की दुनिया का एक बेहद प्रतिष्ठित नाम, जो कि है प्रसिद्ध सितार वादक इटावा इमदाद खानी घराने के प्रमुख प्रतिनिधि और पद्मश्री सम्मानित उस्ताद शाहिद परवेज खान सर। सर कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर।
2: थैंक यू।
1: पहले ही मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपके समय व्यस्तता में आपने हमें समय दिया, इसलिए हमारे खानदेश कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी के रेडियो मन भावन की तरफ से शुरू में ही मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर मेरा प्रश्न पहला है, आपका जन्म ऐसे संगीत परिवार में हुआ है जहाँ की पीढ़ियाँ जो है सितार और भारतीय शास्त्रीय संगीत की परंपरा में चली आ रही है, बचपन से आपके घर का संगीत वातावरण कैसा था और माहौल कैसा था, व्यक्तित्व को किस तरह आपको प्रभावित किया?
2: आपका पहला सवाल है कि हमारे यहाँ का माहौल कैसा था। जैसे म्यूजिक फैमिली में होता है, क्योंकि मेरे पिताजी म्यूजिशियन थे, मेरे ताया जी, मेरे दादा, मतलब हमारे चारों तरफ म्यूजिक ही था, तो जो म्यूजिक का माहौल, जैसे 24 घंटे म्यूजिक की ही बातचीत होती थी, उसी तरह से हमारी ट्रेनिंग भी हुई, उसी के बीच हमारा रियाज भी हुआ, तो ये माहौल जैसे होता है वैसे ही था।
1: आपने पहली प्रस्तुति 8 साल की उम्र में की थी
2: जी,
1: तो उसके कुछ यादें अभी है?
2: देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे जो पिताजी थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट व्यक्ति थे और उनकी एक्सपेक्टेशन मेरे से बहुत ज़्यादा थी, और जब तक वो जिंदा थे उन्होंने कभी तारीफ नहीं किया मेरी, तो उन्हीं का मुझे टेंशन रहता था। बट क्या इसी वजह से एक फ़ायदा भी हुआ कि मुझे लोगों का डर नहीं लगा कभी, मैं उन्हीं का सोचता था कि वो क्या सोच रहे हैं। तो इस चक्कर में ये हुआ कि जो एक पब्लिक फेयर होता वो कभी रहा नहीं, कभी डर उनका रहा नहीं। तो उसकी सबसे पहली बात तो ये कि मेरे लिए जीवन का बहुत बड़ा दिन था वो, क्योंकि पहली बार इतने बड़े स्टेज पे मैं परफॉर्म कर रहा था, तो ये तो मेरे लिए जिंदगी भर तक की याद है।
1: वो आपका पहला परफॉर्मेंस था। आपने सितार के साथ साथ शास्त्रीय गायन और तबले का भी प्रशिक्षण लिया है, तो सितार वादन की शैली को किस तरह आपने समृद्ध किया है ऐसे आपको लगता है?
2: देखिए, पहली बात तो ये है कि जैसे आपने जिक्र किया कि गायन और तबला, तो ट्रेडिशन ऐसा होता है कि जैसे आप कुछ भी सीख रहे हो आपको गाना और थोड़ी तबले की तालीम होनी ज़रूरी है, ऐसा अगर आप प्रोफेशनल लेवल पे करना चाहते हो। तो ये चूंकि एक ट्रेडिशन था इसलिए मेरे साथ भी हुआ। और इसमें आपका दूसरा सवाल क्या था?
1: मेरा सवाल था कि समृद्ध कैसे किया आप?
2: देखिए, जैसे भी जो इंसान सीखता है तो उसकी सोच, उसकी समझ और उसका जो भी पेश करने का तरीका, सब कुछ सबका डिफरेंट होता है। तो मेरे वक्त में जो मास्टर्स थे, जैसे मेरे म्यूजिक पे जिन लोगों का असर, उसमें उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब का सुना बचपन में हमने, उस्ताद अमीर खान साहब का सुना, उस्ताद विलायत खान साहब को सुना, पंडित रविशंकर जी, तो ये सब लोगों का जो भी मेरा सुन के जो मेरी समझ थी उस हिसाब से फिर मैंने इसको किया जैसे भी करना था।
1: अच्छा, आपकी संगीत शैली की सबसे खास पहचान गायकिंग मानी जाती है। आप हमारे रेडियो मनभावन के श्रोताओं को सरल शब्दों में बताएं कि गायकी अंग क्या है और सितार पर इसे साधना कितना चुनौतीपूर्ण है।
2: पहली बात तो ऐसा है कि हमारी खासियत जो है गायकी अंग बाद में है, उससे पहले तंत्र। तंत्र का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट, क्यों हमारे 7 जनरेशन से तो इंस्ट्रूमेंट बजाते आ रहे हैं, हमारी खासियत तो इंस्ट्रूमेंट की है, तो उसको तंत्र अंग कहते हैं। तो पहले के ज़माने में तंत्र अंग ही बजता था, गायकी नहीं बजती थी इतनी। ये विलायत खान साहब की इन्वेंशन है कि उन्होंने गायकी अंग इंट्रोड्यूस किया। अब गायकी अंग के बारे में लोगों को बहुत बड़ी बड़ी गलतफहमी है। कुछ लोग ऐसा समझते कि गाने को कॉपी करने को गायकी अंग कहते हैं, कुछ लोग समझते कि जिस तरह से गा रहे हैं उसी तरह बजा रहे हैं, मतलब विलंबित एक ताल गाएंगे और ऐसे तिलवाड़ा गाएंगे और उसको गायकी अंग समझेंगे, ऐसा मतलब नहीं है। गायकी अंग का मतलब मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि सबसे संपूर्ण जो साज है वो गला है, नेचुरल, बाकी के साज तो बनाए हुए हैं। तो गले की जैसे उसमें असर पैदा करना, जैसे गाने से असर होता है ऐसे ही अगर बजाने से असर होगा तो उसको गायकी अंग कहते हैं।
1: अच्छा,
2: तो ये इतना बड़ा चैलेंज है कि उसके लिए आपको पहले सांस पे पूरा कमांड होना चाहिए, तब आप ये चीज के बारे में सोच सकते हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है।
1: इटावा या का जो ये है इमदाद खानी घराने की कई पीढ़ियां इसकी विरासत आप तक पहुंची है, इस घराने की कौन सी विशेषता है जिसे आप सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं?
2: देखिए, अगर एक ही चीज पे कई जनरेशन तक काम होता है तो जाहिर है कि उसमें बहुत ज्यादा प्रोग्रेस होगी। तो हमारे यहाँ एक सांस पे सदियों से काम होता चला रहा है, इसलिए जो हमारे घराने में सितार की जो खासियत है इंस्ट्रूमेंट टेक्निक वाइज, उतना टेक्निक मुझे नहीं लगता किसी और घराने में हो सकता है। म्यूजिक तो हर जगह है
1: जी,
2: हम ये नहीं कह सकते म्यूजिक हमारे यहाँ वहाँ नहीं, म्यूजिक हर जगह है, समंदर है ये, लेकिन जो सांस की टेक्निक की बात है वो हमारे घराने की खासियत है
1: जी। आपको पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जैसे प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त हुए हैं, इस सम्मान के आपके संगीत जीवन को किस तरह प्रभावित किया है और आपके लिए पुरस्कारों से अधिक महत्वपूर्ण क्या है?
2: पुरस्कार जो होता है उससे ये मालूम पड़ता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो लोगों तक पहुंच रहा है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि दो तरह के पुरस्कार होते हैं, एक तो इंसान इंसान को देता है, जैसे मुझे संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड मिला या पद्मश्री मिला, इंसान ने दिया है। और एक अवार्ड होता है कि जो भगवान देता है। कौन सा बड़ा है आपके हिसाब से? भगवान ने मुझे इतना बड़ा अवार्ड संगीत दिया है तो मैं और किसी अवार्ड की क्यों इतनी परवाह करूंगा। हाँ, बट ये जरूर है कि मेरे देश ने मुझे सम्मान दिया है तो वो मैं जरूर लूंगा और उस पर मुझे गर्व भी है
1: जी। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही, और ईश्वर और देश दोनों को भी बैलेंस करके आपका उत्तर हमें बहुत प्रभावित किया। मेरा अगला सवाल है, आपके मायने में भारत के साथ साथ दुनिया भर के अनेक देशों में आपने शास्त्रीय संगीत प्रस्तुत किया है, विदेशों में भी भारतीय राग और सितार को सुनने वाले श्रोताओं की प्रतिक्रिया में आपको क्या विशेषता दिखाई दी भारत में और भारत के बाहर?
2: बहुत लोगों ने मुझे सवाल पूछा, जब आप यहाँ बजाते तो वहाँ बजाते क्या फर्क है? देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि हमारा कल्चर अलग है, लेकिन दूसरे देश के लोग अगर इस कल्चर को अडॉप्ट करके इसको उस तरह से अप्रिशिएट करते हैं तो मेरी नज़र में बहुत बड़ी बात है। बट असलियत तो यह है कि ये जो संगीत है इसी मिट्टी का है, यहाँ जो मज़ा आएगा वो तो कहीं नहीं आएगा, इसमें कोई शक नहीं है
1: जी। आज की युवा पीढ़ी के पास संगीत के लिए माध्यम है, इंटरनेट है, डिजिटल मीडिया जैसे साधन है, आपके अनुसार आधुनिक तकनीक और पारंपरिक गुरु शिष्य की परंपरा के बीच किस तरह संतुलन बनाया जा सकता है?
2: जब भी कोई चीज का आविष्कार होता है खासतौर से साइंस में और जब इंसान उसको इस्तेमाल करता है तो हमेशा दो बातें होती हैं, कुछ फायदे होते हैं और कुछ नुकसान होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास फोन है, पहले फोन होता था सिर्फ बात करने के लिए, आज फोन पे आप सब कुछ करते हैं, ये तो फायदा है। लेकिन नुकसान साथ साथ ये भी है कि आपको दूसरों के लिए तो छोड़ दो, खुद के लिए टाइम नहीं बचता। तो इसी तरीके से इंटरनेट से या इतना एक्सेसिबल होने से एक फायदा तो है कि संगीत लोगों तक पहुंच रहा है जो कि पहले बहुत मुश्किल होता था। लेकिन ये जो चीज़ है, ये जो अपना आर्ट है, ये अपना संगीत है, ये बिना गुरु के अगर समझ लेंगे कि मैं इंटरनेट से सीख लूँगा तो ये उनकी गलती है, उनका नुकसान होगा
1: जी। यदि अभी हमारा प्रोग्राम हुआ है, यहाँ से एक आधा युवक आया और मैंने कहा कि जैसे मैं ही हूँ कि उस्ताद जी मुझे सितार सीखना है और मुझे बहुत बड़ा कलाकार बनना है, तो आप क्या कहेंगे?
2: बहुत अच्छी बात है, मैं उसको वेलकम करूंगा, लेकिन साथ में एक सवाल पूछूंगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक्सपेक्टेशन तो आपकी इतनी सारी है और मेहनत इतनी सी है, तो ये तो काम बनेगा नहीं। 10 करोड़ का मकान चाहिए तो 10 करोड़ चाहिए भी। अगर आपको बहुत बड़ा कलाकार बनना है तो बड़ा कलाकार बनने के लिए जो मेहनत लगती है, जो डेडिकेशन लगता है, जो सेक्रीफाइस लगता है और जो टैलेंट लगता है, वो सब कुछ होना जरूरी है, तभी तो हो सकता है।
1: जी, मुझे एक और सवाल पूछना था। जैसे दोपहर में आप आए, आपने दिया इसका पूरा जायजा लिया, वहाँ पे पूरा देखा संगीत म्यूजिक और ये, और फिर आपने कहा ये कैमरा क्या है और ये कैमरा नहीं चाहिए या ये 15 मिनट चलेगा, भाई ऐसा क्यों? हमें लगता है कि आप हमारे साथ अनंत काल तक रहना चाहिए, तो हमें यदि वो संजोना है, आपको वीडियो में ऑडियो में बद्ध करना है, तो फिर ऐसा ये जो आपका घराना है इसके बारे में लोगों को और पता चले।
2: बिल्कुल सही कहा आपने। पहली बात तो ये कि आप जितने भी कलाकार आज तक हुए उनको उठा के देख लीजिए और मुझे देख लीजिए, मैंने सबसे ज्यादा इजाजत दिया है रिकॉर्डिंग करने के लिए, लेकिन आपको साथ में ये भी मालूम होना चाहिए कि इसका मिसयूज भी हुआ है, इसलिए हमें रोकना पड़ता है। हमें पता होना चाहिए कौन कर रहा है, किसके लिए हो रहा है, क्या इसका यूज होगा। अगर कोई एकेडमिक के उसके लिए आर्काइव्स के लिए करते हैं, हम कभी मना नहीं करते। कोई चोरी से कर रहा है तो हम उसको कैसे इजाजत देते, वो उसका मिसयूज करेगा तो क्या होगा फिर? आई होप दैट आंसर द क्वेश्चन आपको।
1: जी, तो कंसेंट लेना चाहिए हर किसी ने कलाकार का, ये हम भी मानते हैं, और हमें लगता है कि कंसेंट लेने के बाद आप हमें अगला जो प्रोग्राम होगा वो पूरा रिकॉर्ड करने की अनुमति देंगे।
2: जरूर, हमें पहले पता होना चाहिए कि इसका इस्तेमाल क्या होगा।
1: जी,
2: अगर इसका इस्तेमाल कमर्शियल उससे होने वाला है तो हमको दूर ना रखा जाए, हमको भी शामिल करो, और अगर ये लोगों तक पहुंचाने का काम है तो जरूर इजाजत देंगे हम आपको।
1: जी, बहुत बहुत शुक्रिया उस्ताद जी। अंत में मैं एक कहना चाहूंगा, रेडियो मन भावन के श्रोताओं के लिए क्या संदेश है? हमारा ग्रामीण इलाका है, हमारी योग अभी जैसे खानदेश कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी, जो हमारे चेयरमैन है प्रज्ञावंत नंद कुमार बेंडाले जी, इनके दूरदृष्टिकोण से आज ये सप्त कला का दालन है, तो आज भी बहुत ग्रामीण भाग में ये कलाएं उतनी तरह पहुंच नहीं पा रही है, तो क्या कहेंगे आप कि किस तरह काम करना चाहिए इन कलाकारों ने जो आज हमारे बीच हमारे पास है? तो जैसे बहुत बार होता है कि मुझे कुछ आता है या मैं एक रेडियो का डायरेक्टर हूँ तो अहंकार बहुत आ जाता है, तो अहंकार कम करके संस्कार संगीत के कैसे करें?
2: देखिए, एक बात हमेशा याद रखिए, दो चीज एक साथ कभी नहीं रह सकती, या तो विद्या रह सकती या अहंकार रहेगा। विद्या रहेगी तो अहंकार नहीं रहेगा, अहंकार रहेगा तो विद्या नहीं रहेगी। इसीलिए आपने देखा होगा जो बहुत बड़े कलाकार हैं वो झुक जाते हैं, जिस पेड़ में बहुत ज्यादा फल लगता है वो झुक जाता है। अहंकार और विद्या एक साथ नहीं रह सकती। किसी में जब अहंकार है तो आप समझ लेना कुछ नहीं आता उसको, जिसको कुछ आता होगा। देखिए, हमारे यहाँ एक मिसाल है, ये मैं चाहता हूँ सबको मैसेज दूँ। हमारे यहाँ बहुत बड़े वली हुए, हजरत अली उनका नाम था, अली, आपने नाम सुना होगा अली
1: जी।
2: उनका क्या कहना है, वो कहते हैं कि बड़ा इंसान की पहचान क्या है? बड़े इंसान की पहचान है कि कोई भी इंसान उनकी कंपनी में बैठ के अपने आप को छोटा ना महसूस करे तो वो बड़ा है।
1: सर, जाते जाते हमारे जो अभी स्टूडेंट है, हमारे सुनने वाले श्रोता है, नवोदित कलाकार है जो अभी संगीत की साधना कर रहे, आपके पास भी बैठे बच्चे थे, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे?
2: सबसे पहली बात तो ये देखिए कि मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जमाना फास्ट जरूर हो गया है, हर चीज़ में जल्दी रहती है, लेकिन मुझे आप एक बात बताइए, कितना भी आप तरक्की कर ले तो क्या बच्चा जो 9 महीने में पैदा होने वाला तो 4 महीने में हो सकता, पॉसिबल है क्या?
1: नहीं।
2: क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि जब सीधा रास्ता होता है तो उसमें शॉर्टकट मत ढूंढे, सीधे रास्ते पर शॉर्टकट नहीं होता।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय निकाला फिर से हमारे खानदेश कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी कान्हा ललित कला केंद्र और रेडियो मन भावन की तरफ से बहुत बहुत आभारी, धन्यवाद।
2: नमस्कार।

0: कृषि विभाग महाराष्ट्र शासन आत्मा आणि रेडिओ वत्सगुण द्वारा प्रसारित कृषि कार्यक्रम श्रृंखला ऐकत रहा रेडिओ वत्सगुण 90.8 FM वर आवाज वाशिमचा वाशिमचा
1: ट्यून इन एनीवेर रेडिओ मन भवन 90.8 FM ऑलवेज एट टचिंग.
2: नमस्कार दोस्तों, 90.8 FM रेडिओ मन भवन पर मैं हूं आपका दोस्त मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो. दोस्तों, अब तक हमने गुरु के ज्ञान और उनके कड़े अनुशासन की बात की, लेकिन ज्ञान जब तक प्रेम में न भीगे तब तक वह रूखा होता है. कबीर कहते हैं कि जब गुरु की असीम कृपा होती है तो वह किसी उपदेश की तरह नहीं बल्कि प्रेम की वर्षा की तरह बरसती हैं. आज का दोहा इसी प्रेम की फुहार और उसके बाद भीगने वाले उस आनंद के बारे में है. श्रोताओं, हम सब प्यासे हैं, शांति के प्यासे, आनंद के प्यासे. कबीर आज बता रहे हैं कि वह प्यास कैसे बुझती हैं. जब भीतर की तैयारी पूरी होती हैं तो ऊपर से वह बादल बरसता है जिसका इंतजार हर साधक को रहता है. कबीर, बादल प्रेम का हम पर बरसा आई, अंतरी भीगी आत्मा हरी भई बनराई. कबीर, बादल प्रेम का हम पर बरसा आई,

0: आई। इस दोहे में परमानंद का दर्शन है। कबीर कहते हैं, कबीर बादल प्रेम का, परमात्मा का प्रेम, गुरु का स्नेह एक बादल की तरह है जो बिना किसी भेदभाव के बरसता है। जब वह प्रेम हम पर बरसा आई, यानी मुझ पर बरसा, तो उसका असर क्या हुआ? अंतरी भीगी आत्मा, सिर्फ शरीर नहीं, सिर्फ बुद्धि नहीं, बल्कि मेरी आत्मा भीतर तक भीग गई। जब तक आत्मा प्रेम के रस में नहीं भीगती, तब तक जीवन में शुष्कता बनी रहती है, और जैसे ही यह रसमय होती हैं, हरी भई बनराई, मेरे भीतर की पूरी बनराई यानी रुतियों का उपवन हरा भरा हो उठा। इसका गहरा अर्थ यह है कि जो विकार सूखे पड़े थे, जो मन उदास था, वह प्रेम की उस एक वर्षा से खिल उठा। जैसे पहली बारिश के बाद धरती से सौंधी खुशबू आती है और चारों तरफ हरियाली छा जाती है, वैसे ही सुमिरन और प्रेम के मेल से साधक का पूरा व्यक्तित्व महक उठता है। कबीर यहाँ समझा रहे हैं कि आत्मा केवल त्याग और तपस्या नहीं है। कबीर यहाँ समझा रहे हैं कि अध्यात्म केवल त्याग और तपस्या नहीं है, यह तो प्रेम में अकंठ भीगने का उत्सव है। दोस्तों, क्या आपने कभी उस प्रेम को महसूस किया है जिसमें भीगने के बाद कोई शिकायत बाकी नहीं रहती, जहाँ मैं मिट जाता है और केवल आनंद बचता है? आज कोशिश कीजिए अपने भीतर की उस बंजर जमीन को प्रेम के दो घूंट पिलाने की। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ, सुनो भाई साधो, 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम राम।
1: नमस्कार, मी आहे पुष्कर श्रोत्री आणि आपण ट्यून केला आहे रेडिओ मन भावन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टच।
2: पात थगत आफ्टर द डेव्हलपमेंट ऑफ 10 कॅरेक्टर्स यू नरेटेड इनएविटेबल आस्पेक्ट्स, ग्रीड, इग्नोरन्स, मर्डर, रात, ॲडल्ट्री अँड लाईज। यू सेड दीज अटॅक cause destruction of the base of individual purity. Hence, men be kind to each other, include Arya Ashtangik path. With the development of 10 characters in life, man must love man, but beyond love, man must develop friendship with man. Friendship is comprehensive, more contact rather than love. Friendship makes aware of fraternity. It is not just confined to human beings. Virtuous man needs wisdom, intellect, conscience. For conduct, good deeds done blindly can be said it is not appropriate. The path of virtuous may pass the test of wisdom and awareness of conscience. Baat tha gata. Once someone asked you, who is the inheritor of Dhamma after you? You said, subjectivity is an obstacle in the way of Dhamma. Be the guardian of Dhamma. Dhamma means morals. Dhamma means thought. Dhamma means character building. Dhamma means polite progress of life. You gave the message to follow Dhamma, and very clearly you said, I am your guide, not the giver of salvation. Many religious pioneers call themselves enlightened. Many said, I am your creator, worship me and get salvation to your soul. Someone said, I am the God and I am everything. Somewhat said, I am the son of the God, and some other said, I am the prophet, messenger. But you rejected theism, illusory rituals, any rational and false statement. You said, there exists nothing like this. Salvation or amelioration aren't in anyone's hand. One has to ameliorate oneself through knowledge, character, development, conduct. By becoming wise, by following the path of Atta Deepa Bhava, you said, I am your guide. I will show you the path towards Nibbana. But the decision of following the path and the actual journey are to be done by your own. Contentment, bliss and neutrality aren't gained by the blessing of others. For that, we have to proceed on the path of rationality, character, determination. Bhatatagata, you said, Nibbans means blessedness. Blessedness is in nothing as it is in Nibbana. In all the theories, Nibbana is the central one. What is this Nibbana? Before you, some people attempted to call Nibbana as salvation. Previously, four types of salvation was regarded. The first one was eating, drinking and merrymaking. Its nature is materialistic. The second one was yogic. The third one was Brahmani. And the fourth one was related to Upanishads. For Nibbana concept, Brahmani and Upanishadic are similar. These ideas referred to the existence of the soul as an independent entity. But Tathagata, you condemn these theories. You proved how vain is that arrangement. You refuted that teaching. Nibbana in material sense means satisfaction of the senses. Due to satisfaction of the senses, slightest of spirituality isn't possible. Because of them, the well-being of human beings cannot be attained. Materialism cannot attain the path of Nibbana.
3: Hi, me Arjaswara. Apan tune gele Radio Manbhavan 90.8 FM, always heart touching.
4: Namaskar, Om Shanti. Vishwasvadharme Surya Paho. Duritanse Timira Zavo, Vishwasvadharme Surya Paho. पिछले एपिसोड में हमने विश्व के बारे में चिंतन किया, चर्चा की. विश्व क्या है, लिमिटेड टू अनलिमिटेड, उसके ऊपर भी चर्चा की. ग्रह, नवग्रह जो है उनके बारे में कथा भी सुनी. अभी हम चिंतन करेंगे स्वधर्म में. यह स्वधर्म में जो शब्द है बहुत आकर्षक है, चिंतनीय है. और मेन कैच जो हम कहते हैं वो मुझे लगता है ये स्वधर्म में है. विश्व स्वधर्म में सूर्य, पंचलाइन जो पिछले एपिसोड में मैंने कहा था, ये पंचलाइन जो है स्वधर्म में, उसमें धर्म भी आ गया. और धर्म जो है, धर्म और कर्म हम कहते हैं ना, धर्म और कर्म. और इसलिए भगवद गीता की शुरुआत ही है जो धृतराष्ट्र पूछता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयोत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय. उसकी शुरुआत है धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र. फिर ये धर्म क्षेत्र क्या है और कुरुक्षेत्र क्या है, वो तो अलग चिंतनीय विषय है, सब्जेक्ट है, उसके ऊपर हम नहीं जाएंगे. लेकिन धर्म जो है, हम सुनते बहुत है धर्म के बारे में, और हमारी मान्यता भी कई है, अनेक धर्म हम मानते हैं. मुख्य रूप से हम चार धर्म मानते हैं. वैसे तो बहुत सारे धर्म हैं, लेकिन हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई ऐसे मानते हैं। तो ये धर्म है और ये विश्व स्वधर्मे सूर्य पाहो, स्वधर्मे ये जो मतलब है वो शब्द यूज किया है संत श्रेष्ठ माउली ने, उसका मतलब क्या होगा? कई लोग ऐसे समझते हैं कि ये स्वधर्म मीन्स जन्म से हमें हमारे धर्म का पालन करना है, लेकिन वो कौन सा धर्म? और धर्म और कर्म, जैसा धर्म है वैसा कर्म है ऐसे भी सोचते हैं। और गीता में और भी एक धर्म का उल्लेख है, धर्म शब्द का प्रयोग किया है, वैसे तो बहुत जगह किया है, लेकिन जो मन को भा लेता है या मन को चिंतन करने को प्रवृत्त करता है वो है कौन सा है? जब भी धर्म की ग्लानि होती है संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे, ये जो है वो धर्म की रक्षा करने के लिए गीता में कहा गया है कि मैं युगे युगे अवतार ले लूंगा, है ना? तो ये धर्म कौन सा है? तो ये धर्म अगर धर्म संस्थापनार्थाय, ऐसा कहा है धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, ये धर्म की संस्थापना जो है यह अभिप्रेत कौन सी है? हिंदू धर्म की। यह गीता में हमारा बहुत सारे लोग मानते हैं कि हिंदू धर्म की गीता है, तो ये भगवान श्री कृष्ण ने जो मानते हैं हम गीता भगवान श्री कृष्ण ने सुनाई, तब भगवान को ये अभिप्रेत है कि संभवामि युगे युगे धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, ये धर्म संस्थापना जो है वो हिंदू धर्म की है या और कोई धर्म की, इसके ऊपर हमें रियली गहन चिंतन करना पड़ेगा, क्योंकि हम बहुत बार गलत फहमी में रहते हैं और इसलिए सोचते हैं कि ये गीता सिर्फ हिंदुओं की है, और बाद में बहुत सारे लोग हैं, गीता का अगर आपने विस्तृत तरीके से अभ्यास करेंगे तो आपको पता चलेगा कि नॉट ओनली इन इंडिया, सारे जगत में उसका अभ्यास हुआ है और उसको मान्यता भी है। तो ये धर्म जो है वो हिंदू धर्म से भी कुछ हटके है, और फिर भी माउली ने और एक शब्द यूज किया, धर्म सिर्फ धर्म नहीं विश्व स्वधर्म में, तो स्वधर्म मीन्स खुद का धर्म, खुद मीन्स कौन? मैं, मेरा धर्म, फिर मैं कौन? इसके ऊपर बहुत अच्छी एक कथा है छोटी सी, शेयर करेंगे आपसे। विवेकानंद जी की कथा सुनाते हैं, वो रामकृष्ण परमहंस उनके आश्रम में गए थे, बाहर से उन्होंने दरवाजा नॉक किया, तो रामकृष्ण जी परमहंस जो थे उन्होंने पूछा कि कौन? तो विवेकानंद जी तो दरवाजे के बाहर खड़े थे, उन्होंने कहा मैं। तो फिर रामकृष्ण जी ने पूछा मैं कौन? विवेकानंद जी का जवाब बहुत अच्छा था, उन्होंने कहा मैं कौन यही तो जानने के लिए मैं आपके पास आया हूं गुरुवर। तो ये मन मैं जो है ये जब पता चलेगा तो स्वधर्म का पता चलेगा, और इसलिए कहते हैं ये विश्व स्वधर्मे, स्वधर्मे मेरा धर्म, और मेरा जो धर्म है मैं पहले कौन? तो मैं एक आत्मा हूं, और ये मेरे आत्मा का धर्म जो है वो है शांति। तो स्वधर्म जो है वो है शांति, और इसलिए ये शांति कब मिलेगी? जब पवित्रता आएगी। और ये इसलिए बोलते हैं कि ये देखो शांति हम कहते हैं, हम आत्मा की बात कहते हैं तो बोलते हैं कि आत्मा परमात्मा की बात मत करो, हम मानते ही नहीं आत्मा है, परमात्मा है ये भी नहीं मानते। तो ये आत्मा और परमात्मा की बात नहीं है। हम बातें बहुत करते हैं लेकिन उसकी जड़ तक नहीं जाते। देखिए, अगर कोई मरता है तो हम क्या कहते हैं, परमात्मा उस आत्मा को शांति दे, या उस आत्मा के लिए शांति का दान दे, इस ऐसी सद्भावना रखते, उसको सदगति मिले, उसे शांति मिले। मीन्स पहले नहीं थी, हम जब जिंदा है तब आत्मा को शांति नहीं थी। और कभी कभी ऐसा ही लगता है, क्योंकि देखो अगर हम बहुत परेशान हो जाते हैं, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, गणपति है, वहां विसर्जन है, बहुत बैंड बाजा, बहुत शोर शराबा होता है, डीजे आजकल बोलते हैं ना, बहुत बड़ा धमाका हो जाता है आवाज। आप 2-3 घंटा वहां खड़े रहो, कान पक जाएंगे, और फिर जब घर पे आएंगे बोलतेंगे हाँ यहाँ कितना अच्छा लगता है, शांति लगती है। तो ये शांति जो है वो अच्छी लगती है, लगती है ना, क्यों अच्छी लगती है, इसलिए बोलते हैं हम ओरिजिनल स्टेज पे आ जाते हैं, ओरिजिनल स्टेट पे आ जाते हैं। अशांति आदमी को अच्छी नहीं लगती, आदमी कोई भी व्यक्ति को अशांति अच्छी नहीं लगती, भले थोड़े देर के लिए वो सह लेता है, या कोई गलत फहमी से उसको लगता है कि यह अशांति अच्छी है, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसे वो अच्छी नहीं लगती और शांति अच्छी लगती है। इसलिए बोलते हैं शांतिपूर्ण, शांतता। और हमारा भारत देश भी ऐसे मान्यता है कि शांतिपूर्ण है। तो ये शांति जो है वो कब आएगी, मन अशांत है तो गड़बड़ है, और मन शांत है तो अच्छा है। और ये शांति जब आती है, जब मन में पवित्रता हो। पानी का उदाहरण लेते हैं कि पानी में अगर कोई डस्ट पार्टिकल्स है तो पानी को स्थिर कर दो तो पानी ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। वैसे अगर मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, स्वधर्म मेरा जो है वो शांत है, लेकिन अगर वो शांति नहीं है तब मैं अशांत हूं, और फिर उसका परिवर्तन, उसका परिणाम दुख में हो जाता है। और इसलिए शांति हमेशा अच्छी लगती है। और ये विश्व स्वधर्मे जो मुझे लगता है, आप भी उसके ऊपर चिंतन करो, आप ज्ञानी हो, आप पढ़े लिखे हो, आपने काफी मेरे से भी शायद ज्यादा पढ़ा है, तो उसके ऊपर मेरा ये जो प्रयोजन है आपके साथ शेयर करने का, ये नहीं है, ठोपना नहीं है आपके ऊपर कि यही मैं कह रहा हूं वही सही है, आपके विचारों को दिशा देने का ये प्रयास है। और ये प्रयास सक्सेसफुल होगा अगर आप उसके ऊपर चिंतन करेंगे, कुछ सोचेंगे, और फिर आपको जैसा लगे वैसा है। तो ये स्वधर्म के ऊपर मुझे ऐसा जो चिंतन था वो आपके सामने पेश किया है। अभी सूर्य जो है, सूर्य, उसके ऊपर अगली कड़ी में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार, ओम शांति।
3: ट्यून इन एनीवेयर, रेडियो मन भवन 90.8 FM।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। जब पीछे मुड़कर देखा, पास्ट को जब भी देखते हैं, तो ना चाहते हुए भी वो सारी बातें हमें याद आ जाती हैं, या फिर हम जीवन में जब चल रहे होते हैं, कभी भी अचानक अनजाने ही पास्ट की बातें ट्रिगर हो जाती हैं, और फिर जहां हम खड़े हैं वो पास्ट ही हमारा प्रेजेंट बनने लगता है। अगर पिछली कड़ी आपको याद हो तो हमने बात की थी कि कैसे हमारा पूरा गुजरा हुआ कल आज भी, तभी हम कहते हैं कि हिस्ट्री रिपीट्स, क्योंकि मैंने ही उसे अपना प्रेजेंट बना लिया तो फिर वही तो आगे सामने आएगा। हमने एक मुद्दे पर बात करनी चाही थी और वो था जब किसी लव्ड वन की, किसी करीबी की, जो अपनी देह छोड़ देते हैं, वो नहीं रहते जीवन में, या फिर कहीं कोई ऐसा अपना होता है जो छूट जाता है, कहीं और चला जाता है। तो ऐसे दो एक्सपीरियंस हैं जो कि जिनसे पार पा पाना, या जो वो बार बार अनजाने ही आते हैं, उन्हें कैसे हैंडल करना है, और इस पर बात करते हैं। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी। अगर पास्ट की हम बात कर रहे थे तो कई अनुभव तो छोटे छोटे होते हैं जिसको करके कि हम हैं, और खुद ही अपने आप को हील करना, ये हमने समझा, ना हम किसी और को बदलेंगे ना सिचुएशन बदलेगी, और वो गुजर गया, खत्म हुआ। लेकिन कुछ सिचुएशंस, जैसे कि कोई हमारा बहुत करीबी और उसकी डेथ हुई, वो आज भी उतना ही बड़ा घाव है, और हमने किसी तरह से अपने आप को कवर अप किया है। मतलब इतने लोग इतना समझाते हैं, इतनी बातें करते हैं, कवर अप कर लेते हैं, नॉर्मल जिंदगी भी जी रहे हैं, सबके साथ भी जी रहे हैं, काम पर भी है, लेकिन वो खाव तो भरता नहीं है।
1: डेफिनेटली आई थिंक जीवन में हमें बहुत सारे, जैसे हम शुरू से देख रहे हैं, उतार चढ़ाव देखने, लेकिन ये जो एक परिस्थिति होती है, डेथ ऑफ अ फैमिली मेम्बर और अ क्लोज फ्रेंड, ये शायद जीवन का सबसे बड़ा एग्जाम पेपर होता है, जिसमें तो हमने कहा कि दर्द तो नेचुरल ही है, वी नेवर एवर थॉट के कोई और ऑप्शन भी है। यस, इट्स अ वेरी बिग चैलेंज। जीवन में वो सिचुएशन है जिसको पार करने के लिए बहुत ताकत चाहिए, लेकिन इसमें भी अगर हमें राइट नॉलेज है, विजडम है, और फिर साथ साथ पावर भी है, तो इसको भी हम क्रॉस कर सकते हैं। सबसे पहली बात हम देखते कि उसमें भी अगर हम देखें कि जब हमारा बच्चा, बिकॉज आई हैव मेट अ लॉट ऑफ पीपल इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, लेकिन उसमें भी अगर किसी के बच्चे की डेथ हुई है, यंग अनटाइमली डेथ, तो शायद उसको पेरेंट्स के लिए फेस करना बहुत डिफिकल्ट होता, और वो अपने आप को ये कह ही देते कि बाकी पूरी जीवन तो दर्द में ही बीतनी है। यहाँ तक कि वो दर्द इतना ओवरपावर कर जाता कि कहते हमें जीना ही नहीं है, हमारे जीने का कोई पर्पस नहीं है। उनको अब जो प्रेजेंट फैमिली मेंबर्स हैं वो कोई नहीं दिखाई देते, उनका कुछ नहीं लग रहा, बस वो एक उसमें ही इतने दर्द में चले गए हैं कि कहते आई डोंट वांट टू लिव एनीमोर, आई लॉस्ट माय पर्पस ऑफ लिविंग। ऐसे समय में भी हम अपना ध्यान कैसे रखें, बिकॉज हमारा पूरा जो बात है वो यही कि अपना ध्यान कैसे रखना, क्योंकि अब तो वो जिसका हम ध्यान रख रहे थे
0: वो भी नहीं रहा,
1: वो नहीं है, तो वो दर्द में अब मुझे अपना ध्यान कैसे रखना,
0: अब मैं ध्यान अपना रखना ही नहीं चाहती। यू नो, लाइक दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, कि इट लाइक आई डोंट वांट टू लिव, आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग, यू नो, एंड उसके बावजूद भी मैं करती हूँ, उठता हूँ, काम करती हूँ और चीज़ें करती हूँ।
1: राजयोग में जो सबसे फंडामेंटल बात जो हमें समझ में आती कि मैं कौन हूँ, ये एक फंडामेंटल रियलाइजेशन है जो हमारा सारा पर्सपेक्टिव चेंज कर देती, कि ये शरीर है, नाम है, परिवार है, रोल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, लेकिन इन सब के लिए हमने कहा मेरा, यू नो, मेरा नाम ये है, मेरा प्रोफेशन ये है, ये मेरे रिश्ते हैं। शरीर के लिए भी हमने कहा मेरी आंखें, मेरा कान, मेरा शरीर, आज मेरा शरीर बहुत दर्द हो रहा है, तो ये सब कुछ मेरा मेरा कहने वाला, वो मैं कौन? तो वो हमें समझ में आता कि वो एनर्जी है जिसको हम कॉन्शियसनेस कहते, चैतन्यता जिसको कहते, द लिविंग, द बीइंग पार्ट, क्योंकि हम कहते हैं हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो वी आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू एंटिटीज, वन इज द बॉडी, द ह्यूमन, जो ह्यूमस वर्ड से निकलता मिट्टी, एंड बीइंग इज एनर्जी, कॉन्शियसनेस। तो ये जो बॉडी है ये मेरी है, और मैं कौन? वो शक्ति। जब हमें समझ में आता कि आई एम एनर्जी, देन आई ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड nor be destroyed. So it is eternal. जब ये समझ में आता तो then I understand कि मैं वो चैतन्य शक्ति जिसको spiritual language में हम आत्मा कहते, soul कहते, spirit कहते, मैं eternal हूँ. तो death किसकी होती है? क्योंकि पूरा जीवन हम मृत्यु के भय में जीते हैं. लेकिन जब मुझे समझ में आता कि मैं तो eternal हूँ, आज दिन तक भी हम सुनते आए आत्मा अजर अमर अविनाशी है, जो जल नहीं सकता, जो मर नहीं सकता, जिसका विनाश नहीं हो सकता. आई एम इटर्नल एंड सो इज एवरी सोल. सो एवरी सोल इज इटर्नल. तो मृत्यु का कॉन्सेप्ट क्या है? व्हाट इज डेथ? इज व्हेन आई द सोल लीव वन कॉस्ट्यूम, वन सेट ऑफ रिलेशनशिप्स, वन पर्टिकुलर सीन, एंड देन आई हैव टू शिफ्ट. तो अब हम अगर इसको देखें कि डेथ मीन्स के वो आत्मा एक, क्योंकि वी आर सीइंग डेथ ऑफ अ फैमिली मेम्बर, वो आत्मा जो कल तक मेरे साथ थी, उसका मेरे साथ एक जिसको हम कहें कार्मिक अकाउंट था. हम कहाँ आते हैं? बर्थ और डेथ कैसे डिसाइड होता है? कई लोग बोलते कौन डिसाइड करेगा कहाँ जन्म हुआ और कब तक उस शरीर में रहना और फिर कब वहाँ से चलना है. इट इज़ बेस्ड ऑन माई कार्मिक कनेक्शंस. हम जिस परिवार में हमारा जन्म होता, जिन लोगों के हम कनेक्शन में आते, इट इज़ बिकॉज उन आत्माओं के साथ मुझ आत्मा का कार्मिक कनेक्शन है, जिसको हम कहें एनर्जी के लेन देन है. दिस इज़ बेस्ड ऑन माई पास्ट कार्मिक कनेक्शंस. तो जिन आत्माओं के साथ हम आज हैं, हम पहले भी उनके साथ कभी थे. जब हम उनके साथ पहले थे, हमारा एक पर्टिकुलर अकाउंट क्रिएट हुआ था. अब हम फिर उनको मिलते, फिर हमारा एक अकाउंट है. लेकिन जैसे ही अब मेरा ये अकाउंट जो था वो सेटल हो जाता, आई हैव टू लीव. आई कैन नॉट स्टे वन मिनट मोर आफ्टर दैट. तो जब हमें ये समझ में आता वो आत्मा मेरे कॉन्टैक्ट में आई फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, for settling a particular account, उसके बाद the soul cannot be in my contact anymore, क्योंकि उसका वो account finish हो गया and it has to go somewhere else, जहाँ उनका एक
0: नया account
1: है. वो soul अपनी journey पे है. You know, it's like एक train में हम जा रहे हैं, हम सब अपनी अपनी journey पर हैं. ऐसा नहीं होगा कि सब लोग एक ही station से चढ़ें और सब लोग एक ही station पे उतरें. हर एक की journey अलग अलग है. तो हर एक का बोर्डिंग पॉइंट वो भी अलग अलग है, हर एक का उतरने का स्थान वो भी अलग अलग है, क्योंकि हर एक अपनी अपनी यात्रा पर है.
0: But I didn't want to finish this account. See?
1: No, it's not about I wanting to finish this account. I'm not talking about my account. It's about the other soul's account. अगर आपका अकाउंट मेरे साथ चार दिन का है, तो उसके बाद आपने पांचवें दिन दूसरी जगह जाना ही जाना है, क्योंकि पांचवें दिन आपका कनेक्शन दूसरी जगह. लेट से आप हफ्ते में तीन दिन हमारे साथ शूट करते हैं, लेकिन चौथे दिन आपको कहीं और शूट पे जाना है. आपकी वो कमिटमेंट है. अब मैं को तीन दिन आपके साथ बहुत अच्छा लगा, मैं सोचूं चौथे दिन भी आप यहीं आ जाएं, तो मेरे चाहने से आप यहाँ नहीं आ सकते हैं, क्योंकि आपका कमिटमेंट अब चौथे दिन कहीं और है. अब मैं जो यहाँ पीछे बैठी, आप तो चले गए कहीं और, अब मेरे पास चॉइस है कि मैं इसको एक्सेप्ट करूं कि आपका कमिटमेंट आपका अकाउंट कोई और है, या मैं दर्द में रहूं कि वो क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है आज मेरे साथ.
0: सबसे बड़ी बात ये भी, फिर ये भी रहता है कि तो इसका मतलब उनको जब वो चले गए हम याद ही नहीं रहते, यू नो, बिकॉज कमिटमेंट पूरा हुआ.
1: हम उनको याद नहीं रहते, ये उनके लिए अच्छा है ना एक्चुअली. जब अगर हम एक पल के लिए देखें, आई मेट वन मदर जिनका 21 साल का बेटा ने एक्सीडेंट में डेथ हुई, तो वो बहुत अच्छा पास्ट का अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे. बेटा दूसरे देश में था, तो कहा हमारा इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था कि यहाँ अगर मैं अपसेट होती उसको वहाँ पता चलता, या उसके साथ कुछ होता तो मुझे यहाँ, इतना जैसे हमारा यू नो वो बॉन्डिंग था. तो कहते हम तुरंत फोन करते एक दूसरे को, सब ठीक है, कुछ हुआ है? एंड शी सेड इनवेरिएबली वी वर राइट कि दूसरे के साथ कुछ ना कुछ हुआ था. तो इतना हमारा कनेक्शन. अब वो बच्चा, वो आत्मा कहीं और चली गई है. ये मदर बहुत रोती है, रोज रोती है इतना. तो आई जस्ट आस्क्ड हर वन थिंग. आई सेड कल तक आपका और उस आत्मा का इतना कनेक्शन था ना कि आपकी एक थॉट उधर तक पहुंचती, उसकी एक थॉट आप तक पहुंचती. अब वो आत्मा का कॉस्ट्यूम चेंज हो गया है. सी व्हाट वी से, इट्स ओवर, इट्स डेथ, इट्स फिनिश्ड. नो, इट्स जस्ट द सोल हैज चेंज्ड अनदर कॉस्ट्यूम. लेकिन क्या वो कनेक्शन फिनिश हो गया होगा? क्या वो एनर्जी एक्सचेंज फिनिश हो गया होगा? अगर आप आज कहीं और भी चले गए, क्या आपको भूल गए? आपको याद नहीं आएगी? आएगी. अब क्या होगा? लेकिन पहले वो दूसरे देश में था, उसको अगर याद आता या उसको कैच होता, ही कुड कॉल. एक मिनट के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड, क्रिएट द सीन इन फ्रंट ऑफ यू कि वो आत्मा अब एक दूसरे शरीर में है, प्रोबेबली इन द वूम्ब ऑफ द मदर और अ वेरी लिटिल बेबी, जस्ट कैन नॉट कॉल यू बैक.
0: But will he remember? It's not the remembrance.
1: It is not remembrance. शुरू में तो remembrance है. एक आत्मा जब उस शरीर में है, आप देखो एक बच्चे को शुरू में सारा पास्ट याद होता है.
0: It's like
1: कभी वो हंसता है, कभी वो रोता है. क्या? क्योंकि नेचर है ना, जैसे हमें पास्ट भूलता जाता है, तो नेचर बहुत सुंदर ऐसे बनी हुई है प्रकृति कि जैसे जैसे बच्चा बोलने की स्टेज पर आता, दो तीन चार साल, तीन साल तो हो जाते, तब तक उसको पास्ट भूल जाता क्योंकि प्रेजेंट की इंफॉर्मेशन लेयर उसके ऊपर सारी कोड होते जाते. तो कई बच्चे ऐसे मिलते हैं ना जिनको पास्ट याद होता, तो वो किस एज में होते हैं? वो 19, 20, 25 की एज में नहीं होता कभी भी.
0: 5, 6, 7.
1: क्यों? क्योंकि मेमोरी पावर बहुत स्ट्रांग थी कि वो जो बात दो तीन साल तक भूल जानी चाहिए थी वो 4, 5, 6 साल तक भी याद है और वो उसका वर्णन फिर करना शुरू करते. लेकिन जब वो आत्मा माँ के गर्भ में है, वो तो अभी अभी आई है, या वो एक एकदम छोटा बच्चा, वो तो अभी उसको सब याद है, सारा कुछ याद है, और वो पास्ट को याद करके ही रोता और हंसता है. बच्चा कभी भी प्रेजेंट से बहुत ज्यादा कनेक्टेड नहीं है. हम हॉस्पिटल में बच्चे को क्रेडल में देखते, हम उसके साथ प्यार से बात करते, हमें लगता है वो हमें देखकर डजंट इवन नो मी, डजंट इवन रिकग्नाइज मी, वो कुछ और याद करके हंसता और रोता है. अब यहाँ वो माँ है, यहाँ वो आत्मा है. हम उसको बच्चा नहीं कहेंगे, अब वो आत्मा है यहाँ. अगर पहले आपका एक एक दर्द वो ऐसे कैच करता था, अब नहीं करेगा. अब करेगा या नहीं करेगा? अभी भी करेगा. यहाँ आप इतना रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं, किसको याद करके रो रहे हैं? उसको याद करके रो रहे हैं. लॉ ऑफ एनर्जी
0: किस बॉडी में था? किसी और कॉस्ट्यूम में था.
1: पर कॉस्ट्यूम को नहीं हम याद करते ना. एनर्जी का जो एक्सचेंज है वो कॉस्ट्यूम और कॉस्ट्यूम के बीच नहीं, वो आत्मा और आत्मा के बीच है. दैट्स व्हाट वी सेड इज रिलेशनशिप. अब जब हम रो रहे हैं, हम पेन की एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं. एनर्जी ट्रैवल करने वाली है, कहाँ ट्रैवल करेगी?
0: उसी पे,
1: उस आत्मा के प्रति जिसके लिए वो क्रिएट की गई है. सो यस, इट इज वेरी डिफिकल्ट. यस, हम नहीं इस, हम कहते हैं हम इस दर्द से नहीं निकल सकते. लेकिन अगर हम अपने आप को प्यार से और लॉजिकली समझाएंगे कि जब वो आत्मा यहाँ थी तो मैं चाहे कुछ भी हो जाता उसको दर्द ना होने देती, मैं कुछ भी कर जाती उसको अपने दर्द से दूर करने के लिए. और आज मैं ही बैठकर क्या भेज रही हूँ? मैं दर्द भेजते जा रहे हूँ, भेजते, सिर्फ इसलिए क्योंकि अब वो मेरे सामने नहीं है तो मुझे पता नहीं चल रहा, तो मेरे ऊपर उसका फर्क नहीं पड़ रहा. इफ आई हैव द रियलाइजेशन दैट ऑल दिस पेन दैट आई एम क्रिएटिंग इज गोइंग टू दैट सोल, आई विल स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ. अपने लिए नहीं ध्यान रखना चाहते ना, ठीक है, वी से मुझे नहीं ध्यान रखना अपना, आई डोंट वॉन्ट टू बी फ्री ऑफ पेन. अपने लिए नहीं, उनके लिए सही,
0: जिसके लिए हम जीवन भर वैसे ही करते आए हैं,
1: जिनके लिए, जो हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट थे, उनको इतना दर्द पहुंच रहा है. अच्छा, बच्चा अगर थोड़ा बड़ा होता जाता, वो हमें याद नहीं रख, वो याद नहीं करता, भूल जाता है, लेकिन एनर्जी जो हम भेज रहे हैं वो एनर्जी वो फिर भी रिसीव करता है. एनर्जी ऐसी चीज है, आप जिसके प्रति क्रिएट करो, इट इज ट्रैवलिंग टू दैट पर्सन.
0: तो मतलब इसका मतलब वो जो सोल जिसने जहाँ जन्म लिया जो भी है, उस तक वो वाइब्रेशंस तो पहुंच रहे हैं.
1: ऑलवेज, ऑलवेज, ऑफ कोर्स. सी, इट्स लाइक दिस, आप मेरे लिए जो भी एनर्जी क्रिएट करोगे,
0: तो देन अननोइंगली
1: आई एम सेंडिंग सो मच पेन.
0: यस, और वो पेन में चला जाता होगा बच्चा, मतलब वो जहां पे भी होगा.
1: सी हाउ इट हैपेंस, क्योंकि हमारे अंदर आज इतनी ताकत नहीं है कि हम अपने आप की प्रोटेक्शन कर सके. हमने यही देखा ना, आपने दर्द भेजा तो मेरे भी दर्द में चली जाते हो. अनलेस आई वर्क वेरी हार्ड ऑन माई सेल्फ कि आपकी एनर्जी औरों की एनर्जी मुझ पर इन्फ्लुएंस नहीं करे. लेकिन मोस्ट ऑफ अस आर नॉट डूइंग दैट वर्क. तो मोस्ट ऑफ अस आर गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाटएवर एनर्जी इज बीइंग सेंट टू अस. तो जब हम उन सब लोगों की एनर्जी से इन्फ्लुएंस होते जो हमारे आसपास है, अगर कोई कहीं और भी है लेकिन वो जो एनर्जी भेज रहे हैं उसका भी इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर
0: और उस बच्चे को तो ये पता भी नहीं चलेगा ना, बिकॉज वो सामने हो तब हमें समझ में आता है कि इसकी एनर्जी ये आ रही है, वो उसका ये आ रहा है, लेकिन वो तो द चाइल्ड वोंट बी इवन नोइंग कि वो कहां से आ रही है.
1: दैट्स बिकॉज़ वी आर रिसीविंग अ लॉट ऑफ एनर्जी ऑफ पेन. तो एज अ पेरेंट, एज अ हस्बैंड वाइफ, जो भी हम हैं यहाँ पर, हमें मालूम है, हम अपने आप को तो ये कह देते कि हमें खुश रहने का कोई हक नहीं है, हम रहना नहीं चाहते खुश. यू नो, पीपल से आई डोंट वांट टू बी हैप्पी. इट्स नॉट अबाउट बीइंग हैप्पी. यस, यू डोंट वांट टू बी हैप्पी, बट हैप्पी इज नॉट एक्साइटमेंट. इट्स अबाउट बीइंग स्टेबल. इट्स अबाउट बीइंग पेन फ्री, दैट्स ऑल. क्योंकि अब आप जितनी बार दर्द क्रिएट करेंगे, अपने को तो देंगे ही, उनको भी भेजेंगे. देखो, अगर बच्चा कहीं और है, देखो नॉर्मल में कैसे होता, अगर बच्चा कहीं और है और वो हमें फोन करता दूसरे शहर से, कहता सब कुछ ठीक है घर पे, तो हम क्या कहते? हाँ हाँ,
0: सब ठीक है,
1: सब ठीक है. यहाँ पर हो सकता 10 प्रॉब्लम हो आज, हम बच्चे को कभी नहीं बताते, या जो भी हस्बैंड वाइफ पे गए हो, हम बताते नहीं. व्हाट इज द इंटेंशन? दूसरा जहाँ है वहां वो सेट हो जाए. अगर हम यहाँ की बात उसको बताते रहेंगे सारा, वो वहां सेट कैसे होगा? सिमिलरली आत्मा दूसरी जगह है, हमारा प्योर इंटेंशन क्या होना चाहिए? वो वहां पर सेट हो जाए. हम रोज पता है क्या मैसेज भेजते
0: हैं? हम सेट नहीं होने दे, बिकॉज हमारा, इट मीन्स वी आर एक्चुअली बीइंग लिटिल सेल्फिश. I don't want to say that, but
1: because we're thinking only about ourselves. Yes, no, yeah. We're not thinking about them. Why we were not able to think about them? Because we thought they are gone.
0: Haan.
1: You know, जहाँ हमने कहा they are gone, तो फिर हमें यही नहीं था कि वो अभी हैं. हमने कहा वो तो चले गए.
0: वो मेरी जिंदगी से तो पर चले गए ना, ये बड़ा दुख है.
1: लेकिन
0: वो कहीं तो
1: है ना. सिमिलरली अगर बच्चा दूसरे शहर में, वो यहाँ नहीं
0: है, how should I accept it, you know? Like, ये मैं मान ही नहीं पाती हूँ, because ये इतने confusions और death के बाद क्या होता है क्या नहीं होता, इसको लेके इतने

0: लेकिन
1: That's
0: यहाँ एक बात मैं
1: good.
0: यहाँ पे करना चाहती हूँ कि इससे जुड़ी इतनी कन्फ्यूजन्स हैं कि हम फिर ना कई कई और चीज़ों में चले जाते हैं. उसने शरीर लिया कि नहीं लिया, वो यहीं है कि नहीं है, और कई बार हम कुछ और
1: उनसे कनेक्ट
0: माध्यम
1: करने की भी कोशिश
0: कोशिश
1: करते हैं.
0: करते हैं. इज इट राइट?
1: इट इज अगेन सी राइट एंड रॉन्ग अगेन. जितना हम उसको यहाँ खींचने, देखो एक तो है हम असंभव करने की कोशिश, या तो हमारे कुछ भी करने से अगर वो वापस इस कॉस्ट्यूम में आ सकते, गो एंड डू व्हाटएवर यू वांट, वो तो होने नहीं वाला है. लेकिन अगर हम बार बार यहाँ कनेक्ट करना मेरे से, यू नो, बहुत सारे आजकल टेक्निक्स फॉलो कर, क्या क्या, कम्युनिकेट विद हिम, आई कैन कनेक्ट विद हिम. जब वो यहाँ आ नहीं सकते, हमें उनको क्या करने देना है? जितने बच्चे हैं जिनको अपना पास्ट बर्थ याद आ जाता है, यू नो हाउ अनकंफर्टेबल दे बिकम. वो यहाँ है 5 साल के, याद उनको आ गया कुछ पास्ट का, ये उनका प्रेजेंट है. प्रेजेंट को वो छोड़ नहीं सकते, लेकिन वो प्रेजेंट और पास्ट के बीच में खींचते जाते. एंड दैट इज वाई इट्स लॉ ऑफ नेचर कि हमें वो पास्ट बर्थ भूल जाना चाहिए, क्योंकि जिसको नहीं भूलता वो बहुत कॉन्फ्लिक्ट में चलता है. तो इसी तरह वो आत्मा दूसरी जगह चली गई, लेट इट सेटल. अगर हम उसको इस तरह से अलग अलग तरह से खींचने की
0: तो फिर वो
1: कोशिश कर रहे,
0: सेटलमेंट नहीं होगा
1: नहीं
0: वहाँ.
1: होगा ना. इट इज लाइक सपोज बच्चा दूसरे शहर में है और हम उसको फोन करके बोले वापस आ जाओ, तुम्हारे बिना तो हमारा कुछ नहीं हो रहा, तुम्हारे बिना हमारा मन नहीं लग रहा. हम ऐसा बोलेंगे कभी? हम कहेंगे नहीं, सब ठीक है, आप वहीं रहो. सिमिलरली आत्मा कहीं और चले गए हैं, दूसरी जगह, हम थॉट्स क्या क्रिएट करते, क्यों छोड़ के चले गए, तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकती, मुझे जीना ही
0: तो
1: नहीं है.
0: कुछ भी करके लौट आओ, यू नो, लाइक इट्स
1: नाउ
0: ओह
1: सी,
0: सो
1: नाउ इमेजिन दैट सोल देयर गेटिंग ऑल दीज थॉट्स, दीज ऑल वाइब्रेशंस, हाउ मच पेन. वो आ भी नहीं सकता, कुछ कर भी नहीं सकते, वो सिर्फ क्या करते, रिसीव करते जाते, रिसीव करते जाते. इतना दर्द तो अपने लिए नहीं, उनके लिए, उस आत्मा के लिए जो गए है. लेट्स स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ आर सेल्फ एंड ऑल्सो जो हमारे साथ अभी हैं परिवार में. ये भी एक बहुत बड़ी जो बात हो जाती, एक घर में 2, 3, 4 लोग हैं, एक बच्चा है, दो बच्चे हैं, अच्छा हस्बैंड वाइफ हैं, एक नहीं है, कैन नॉट डू एनी थिंग, लेकिन जो है
0: इरिटेशन होने लग जाती है. आई जस्ट बिकॉज मुझे अपने आप से हो रही होती है.
1: मेरे अंदर सिर्फ दर्द है ना,
0: हाँ
1: रिश्ते में क्या दूंगी मैं दूसरे को. हम ये नहीं वैल्यू करते कि ठीक है वो आज मेरा मेंबर मेरे साथ नहीं है, लेकिन ये एक दो लोग ही. दिस इज हाउ द
0: एंड दे आर आल्सो
1: पास्ट
0: एक्चुअली एज इम्पोर्टेंट एज दैट चाइल्ड
1: एज
0: मस्ट हैव
1: इम्पोर्टेंट
0: बीन.
1: ऑफ कोर्स इक्वली इम्पोर्टेंट. वॉज इट दैट दैट पर्सन वॉज इम्पोर्टेंट, द रेस्ट वर नॉट
0: नो
1: इम्पोर्टेंट,
0: ऑफ कोर्स
1: बट
0: नॉट.
1: माई फोकस गोज ऑल टुवर्ड्स दैट वन हु इज नॉट देयर, एंड इन द प्रोसेस आई निग्लेक्ट एवरी वन हु इज देयर. बहुत घरों में ये देखा जा रहा है कि हस्बैंड वाइफ के बीच का रिलेशनशिप वो दूर हो जाते हैं एक दूसरे से. जो बच्चा है आज वो निग्लेक्टेड फील कर रहा है, क्योंकि पेरेंट्स क्या हैं, पूरी तरह से दर्द में चले गए हैं. तो उस बच्चे को जो उनके साथ है, उसके पास कौन सी एनर्जी है देने की? घर का पूरा वायुमंडल कैसा हो गया है? दर्द में. वी हैव टू स्टॉप एंड आस्क आवरसेल्फ टिल व्हेन विल वी लेट दिस पास्ट influence my present. I cannot do anything about it except for accepting the situation.
0: What to do then? Okay, one realization hits. I just hope a lot of people watching, because this is something actually one can empathize with, you know. Samajh mein aata hai, dard bhi genuine tha. Aur ab ye realization, jab facts saamne aate hain, ki ye hai, ab aap agar apne aap par kaam karne ke liye tayyar hain, to kya karein?
1: Hame ye pata hai ki याद तो आती है, यू नो, हम कहें भूल जाएं उसको तो वो नहीं होता, लेकिन एक है प्यार से याद, दूसरा है दर्द से याद. नॉर्मली क्या होता है, जैसे ही याद आती तो याद इज फॉलोड बाय दर्द. कई बार लोग ये भी कहते हैं कि बहुत सारी अच्छी मेमोरीज थी, हमने बहुत अच्छा समय उनके साथ बिताया, तो वो समय को याद करके हमें अच्छा लगता है. लेकिन एक्चुअली क्या होता, जैसे ही वो अच्छे वाले सीन्स हमें याद आते, हमें उन क्षण बहुत अच्छा लगता, एंड नेक्स्ट क्षण हम दर्द में चले जाते कि अब वो सीन्स नहीं है,
0: क्योंकि अब वो नहीं है, यू नो, वो पूरा वो रोना,
1: तो
0: वो सब कुछ
1: वो अच्छा नहीं है. इट्स नॉट दैट यू क्रिएटेड हैप्पीनेस और यू क्रिएटेड लव, यू स्टिल क्रिएटेड पेन. तो ये हमें याद रखना होगा कि ये दर्द जो हम बार बार जस्टिफाइड कहकर क्रिएट कर रहे हैं, ये मेरे ऊपर तो इम्पैक्ट डाल ही रहा है, मेरे साथ अब जो आत्माएं हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट डाल रहा है, और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट
0: तो कोशिश क्या करें कि वो जो पुरानी गुड मेमोरीज हैं
1: को जब

0: याद करें, नहीं उनको जब भी याद करें, याद तो आती है, याद जब भी करें, वी कॉन्शियसली सिट एंड सेंड वाइब्रेशंस ऑफ लव कि यस आई अंडरस्टैंड यू आर समवेयर एल्स, आई विश दैट यू सेटल देयर एंड आई सेंड यू वाइब्रेशंस ऑफ लव, वाइब्रेशंस. हम नहीं कहते एक मिनट उन आत्मा को शांति का दान भेजे, उस आत्मा की शांति के लिए नहीं हवन करते हैं, क्या करते हैं उस आत्मा की शांति के लिए. लेकिन उस आत्मा को शांति ये सिर्फ करने से नहीं मिलेगी, वो आत्मा को शांति कब मिलेगी,
1: जब
0: हम शांत रहेंगे. हम अगेन सी हाउ वी हैव बिकम, हम शांति भेजने के लिए भी करते हैं, वी आर डूइंग थिंग्स, कुछ भी करने से शांत. अगर मैं रो रो कर हवन कर रही हूँ, हवन नहीं पहुंचेगा उधर, वो तो फिजिकल है, क्या पहुंचेगा,
1: मेरा
0: दर्द पहुंचेगा. तो उस आत्मा की शांति के लिए हमें क्या करना होगा, हमें शांत रहना पड़ेगा. दैट्स द ओनली वे एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू एक्सेप्ट एंड लेट गो ऑफ द पास्ट. एंड जब भी याद आए, वाइब्रेशंस ऑफ लव, पीस एंड पावर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट.
1: एंड एक्चुअली हम जितना पीस पावर और इस लव की वाइब्रेशंस भेजेंगे वो हमसे ही होकर गुजरेंगे. तो दिस एक्चुअली वी कैन ट्राई इट आउट.
0: एक्चुअली सिचुएशन को एक्सेप्ट करना पड़ता है. दर्द क्यों क्रिएट करते हैं, हम एक्सेप्ट नहीं करते, मेरे साथ क्यों ऐसा हुआ, मेरे साथ मुझे नहीं, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आत्मा का मेरे साथ इतना ही समय का पाठ था, अब उनका पाठ कहीं और है. और जितना हम उनको अच्छी वाइब्रेशंस भेजेंगे, वो उस पाठ में बहुत अच्छा अपना जीवन अपने परिवार के साथ, अपने नए शरीर में, अपने नए रोल में बहुत अच्छा बिताएंगे. एंड एज अ फैमिली मेम्बर, एज अ पेरेंट, हमारी शुभ भावना हमेशा क्या होगी कि वो बच्चा जहाँ भी है वो वहाँ पर बहुत सेटल.
1: आई थिंक इट्स अ वंडरफुल वे टू लुक एट इट. कोई बात, कोई सवाल मन में है, आप जरूर हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर फोन पर संपर्क कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर हैं 0124-266-7000, 9999-344-555, 9999-344-666, 9873-666-555. हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दे को हमने अपने साथ लिया है. सिस्टर शिवानी, ये जो प्रोसेस है ये बिना साइलेंस में बैठे हम नहीं अनुभव भी कर पाएंगे. तो हम चाहेंगे कि अगर आज कुछ शेयर करें.
0: सबसे पहले अपने आप को देखें, इस शरीर का मालिक, इस शरीर को भी चलाने वाली शक्ति, दैट प्योर कॉन्शियंट बीइंग शाइनिंग इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड, टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट, मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूं. आई एम अ पीसफुल बीइंग. My peace is my creation. It is not dependent on those who are with me, and it is not dependent on those who have left. I can create it right here in the present moment. And as I create it, it flows out from me. Shanti ke vibrations. मुझ आत्मा से निकल बाहर चारों तरफ फैल रहे हैं और ये उन आत्माओं तक पहुंच रहे हैं जो आज मेरे साथ नहीं है, लेकिन संबंध तो है आत्मा का, आत्मा के साथ संबंध. और ये संबंध स्नेह, शांति और शक्ति का है. I send out vibrations of peace and love to that soul. Om Shanti.
1: Om Shanti. Thank you so much. बहुत कुछ हम अभी तक अपने दर्द के लिए करते आए हैं. आज ये प्रयास भी करके देखें और फिर देखें कि कैसा हम महसूस करते हैं. आपसे अभी विदा लेते हैं. अवेकनिंग में आगे भी बहुत सी बातें होती रहेंगी. ओम शांति.

0: श्रोताओं
1: नमस्कार। आज हमारे साथ है भारतीय शास्त्रीय संगीत की दुनिया का एक बेहद प्रतिष्ठित नाम, जो कि है प्रसिद्ध सितार वादक इटावा इमदाद खानी घराने के प्रमुख प्रतिनिधि और पद्मश्री सम्मानित उस्ताद शाहिद परवेज खान सर। सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर।
2: थैंक यू।
1: पहले ही मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपके समय व्यस्तता में आपने हमें समय दिया, इसलिए हमारे खानदेश कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी के रेडियो मन भावन की तरफ से शुरू में ही मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर, मेरा प्रश्न पहला है, आपका जन्म ऐसे संगीत परिवार में हुआ है जहाँ की पीढ़ियाँ जो है सितार और भारतीय शास्त्रीय संगीत की परंपरा में चली आ रही है। बचपन से आपके घर का संगीत वातावरण कैसा था और माहौल कैसा था, व्यक्तित्व को किस तरह आपको प्रभावित किया?
2: आपका पहला सवाल है कि हमारे यहाँ का माहौल कैसा था। जैसे म्यूजिक फैमिली में होता है, क्योंकि मेरे पिताजी म्यूजिशियन थे, मेरे ताया जी, मेरे दादा, मतलब हमारे चारों तरफ म्यूजिक ही था, तो जो म्यूजिक का माहौल, जैसे 24 घंटे म्यूजिक की ही बातचीत होती थी, उसी तरह से हमारी ट्रेनिंग भी हुई, उसी के बीच हमारा रियाज भी हुआ, तो ये माहौल जैसे होता है वैसे ही था।
1: आपने पहली प्रस्तुति 8 साल की उम्र में की थी
2: जी,
1: तो उसके कुछ यादें अभी है?
2: देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे जो पिताजी थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट व्यक्ति थे और उनकी एक्सपेक्टेशन मुझे से बहुत ज़्यादा थी, और जब तक वो ज़िंदा थे उन्होंने कभी तारीफ नहीं किया मेरी, तो उन्हीं का मुझे टेंशन रहता था। बट क्या इसी वजह से एक फ़ायदा भी हुआ कि मुझे लोगों का डर नहीं लगा कभी, मैं उन्हीं का सोचता था कि वो क्या सोच रहे हैं। तो इस चक्कर में ये हुआ कि जो एक पब्लिक फेयर होता वो कभी रहा नहीं, कभी डर उनका रहा नहीं। तो उसकी सबसे पहली बात तो ये कि मेरे लिए जीवन का बहुत बड़ा दिन था वो, क्योंकि पहली बार इतने बड़े स्टेज पे मैं परफॉर्म कर रहा था, तो ये तो मेरे लिए जिंदगी भर तक की याद है।
1: वो आपका पहला परफॉर्मेंस था। आपने सितार के साथ साथ शास्त्रीय गायन और तबले का भी प्रशिक्षण लिया है, तो सितार वादन की शैली को किस तरह आपने समृद्ध किया है ऐसे आपको लगता है?
2: देखिए, पहली बात तो ये है कि जैसे आपने जिक्र किया कि गायन और तबला, तो ट्रेडिशन ऐसा होता है कि जैसे आप कुछ भी सीख रहे हो आपको गाना और थोड़ी तबले की तालीम होनी ज़रूरी है, ऐसा अगर आप प्रोफेशनल लेवल पे करना चाहते हो। तो ये चूँकि एक ट्रेडिशन था इसलिए मेरे साथ भी हुआ। और इसमें आपका दूसरा सवाल क्या था?
1: मेरा सवाल था कि समृद्ध कैसे किया आप?
2: देखिए, जैसे भी जो इंसान सीखता है तो उसकी सोच, उसकी समझ और उसका जो भी पेश करने का तरीका, सब कुछ सबका डिफरेंट होता है। तो मेरे वक्त में जो मास्टर्स थे, जैसे मेरे म्यूजिक पे जिन लोगों का असर, उसमें उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब का सुना बचपन में हमने, उस्ताद अमीर खान साहब का सुना, उस्ताद विलायत खान साहब को सुना, पंडित रविशंकर जी, तो ये सब लोगों का जो भी मेरा सुन के जो मेरी समझ थी उस हिसाब से फिर मैंने इसको किया जैसे भी करना।
1: अच्छा, आपकी संगीत शैली की सबसे खास पहचान गायकिंग मानी जाती है। आप हमारे रेडियो मनभावन के श्रोताओं को सरल शब्दों में बताएं कि गायकी अंग क्या है और सितार पर इसे साधना कितना चुनौतीपूर्ण है।
2: पहली बात तो ऐसा है कि हमारी खासियत जो है गायकी अंग बाद में है, उससे पहले तंत्र। तंत्र का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट, क्यों हमारे 7 जनरेशन से तो इंस्ट्रूमेंट बजाते आ रहे हैं, हमारी खासियत तो इंस्ट्रूमेंट की है, तो उसको तंत्र अंग कहते हैं। तो पहले के ज़माने में तंत्र अंग ही बजता था, गायकी नहीं बजती थी इतनी। ये विलायत खान साहब की इन्वेंशन है कि उन्होंने गायकी अंग इंट्रोड्यूस किया। अब गायकी अंग के बारे में लोगों को बहुत बड़ी बड़ी गलतफहमी है। कुछ लोग ऐसा समझते कि गाने को कॉपी करने को गायकी अंग कहते हैं, कुछ लोग समझते कि जिस तरह से गा रहे हैं उसी तरह बजा रहे हैं, मतलब विलंबित एक ताल गाएंगे और ऐसे तिलवाड़ा गाएंगे और उसको गायकी अंग समझेंगे, ऐसा मतलब नहीं है। गायकी अंग का मतलब मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि सबसे संपूर्ण जो साज है वो गला है, नेचुरल, बाकी के साज तो बनाए हुए हैं। तो गले की जैसे उसमें असर पैदा करना, जैसे गाने से असर होता है ऐसे ही अगर बजाने से असर होगा तो उसको गायकी अंग कहते हैं।
1: अच्छा,
2: तो ये इतना बड़ा चैलेंज है कि उसके लिए आपको पहले सांस पे पूरा कमांड होना चाहिए, तब आप ये चीज के बारे में सोच सकते हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है।
1: इटावा या का जो ये है इमदाद खानी घराने की, कई पीढ़ियां इसकी विरासत आप तक पहुंची है, इस घराने की कौन सी विशेषता है जिसे आप सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं?
2: देखिए, अगर एक ही चीज पे कई जनरेशन तक काम होता है तो जाहिर है कि उसमें बहुत ज्यादा प्रोग्रेस होगी। तो हमारे यहाँ एक सांस पे सदियों से काम होता चला रहा है, इसलिए जो हमारे घराने में सितार की जो खासियत है इंस्ट्रूमेंट टेक्निक वाइज, उतना टेक्निक मुझे नहीं लगता किसी और घराने में हो सकता है। म्यूजिक तो हर जगह है
1: जी,
2: हम ये नहीं कह सकते म्यूजिक हमारे यहाँ वहाँ नहीं, म्यूजिक हर जगह है, समंदर है ये, लेकिन जो सांस की टेक्निक की बात है वो हमारे घराने की खासियत है
1: जी। आपको पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जैसे प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त हुए हैं, इस सम्मान के आपके संगीत जीवन को किस तरह प्रभावित किया है और आपके लिए पुरस्कारों से अधिक महत्वपूर्ण क्या है?
2: पुरस्कार जो होता है उससे ये मालूम पड़ता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो लोगों तक पहुंच रहा है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि दो तरह के पुरस्कार होते हैं, एक तो इंसान इंसान को देता है, जैसे मुझे संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड मिला या पद्मश्री मिला, इंसान ने दिया है। और एक अवार्ड होता है कि जो भगवान देता है। कौन सा बड़ा है आपके हिसाब से? भगवान ने मुझे इतना बड़ा अवार्ड संगीत दिया है तो मैं और किसी अवार्ड की क्यों इतनी परवाह करूंगा। हाँ, बट ये जरूर है कि मेरे देश ने मुझे सम्मान दिया है तो वो मैं जरूर लूंगा और उस पर मुझे गर्व भी है
1: जी। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही, और ईश्वर और देश दोनों को भी बैलेंस करके आपका उत्तर हमें बहुत प्रभावित किया। मेरा अगला सवाल है, आपके मायने में भारत के साथ साथ दुनिया भर के अनेक देशों में आपने शास्त्रीय संगीत प्रस्तुत किया है, विदेशों में भी भारतीय राग और सितार को सुनने वाले श्रोताओं की प्रतिक्रिया में आपको क्या विशेषता दिखाई दी भारत में और भारत के बाहर?
2: बहुत लोगों ने मुझे सवाल पूछा, जब आप यहाँ बजाते हैं तो वहाँ बजाते क्या फर्क है? देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि हमारा कल्चर अलग है, लेकिन दूसरे देश के लोग अगर इस कल्चर को अडॉप्ट करके इसको उस तरह से अप्रिशिएट करते हैं तो मेरी नज़र में बहुत बड़ी बात है। बट असलियत तो यह है कि ये जो संगीत है इसी मिट्टी का है, यहाँ जो मज़ा आएगा वो तो कहीं नहीं आएगा, इसमें कोई शक नहीं है
1: जी। आज की युवा पीढ़ी के पास संगीत के लिए माध्यम है इंटरनेट है, डिजिटल मीडिया जैसे साधन है, आपके अनुसार आधुनिक तकनीक और पारंपरिक गुरु शिष्य की परंपरा के बीच किस तरह संतुलन बनाया जा सकता है?
2: जब भी कोई चीज का आविष्कार होता है खासतौर से साइंस में और जब इंसान उसको इस्तेमाल करता है तो हमेशा दो बातें होती हैं, कुछ फायदे होते हैं और कुछ नुकसान होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास फोन है, पहले फोन होता था सिर्फ बात करने के लिए, आज फोन पे आप सब कुछ करते हैं, ये तो फायदा है। लेकिन नुकसान साथ साथ ये भी है कि आपको दूसरों के लिए तो छोड़ दो, खुद के लिए टाइम नहीं बचता। तो इसी तरीके से इंटरनेट से या इतना एक्सेसिबल होने से एक फायदा तो है कि संगीत लोगों तक पहुंच रहा है जो कि पहले बहुत मुश्किल होता था। लेकिन ये जो चीज़ है, ये जो अपना आर्ट है, ये अपना संगीत है, ये बिना गुरु के अगर समझ लेंगे कि मैं इंटरनेट से सीख लूँगा तो ये उनकी गलती है, उनका नुकसान होगा
1: जी। यदि अभी हमारा प्रोग्राम हुआ है, यहाँ से एक आधा युवक आया और मैंने कहा कि जैसे मैं ही हूँ कि उस्ताद जी मुझे सितार सीखना है और मुझे बहुत बड़ा कलाकार बनना है, तो आप क्या कहेंगे?
2: बहुत अच्छी बात है, मैं उसको वेलकम करूंगा, लेकिन साथ में एक सवाल पूछूंगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक्सपेक्टेशन तो आपकी इतनी सारी है और मेहनत इतनी सी है तो ये तो काम बनेगा नहीं। 10 करोड़ का मकान चाहिए तो 10 करोड़ चाहिए भी। अगर आपको बहुत बड़ा कलाकार बनना है तो बड़ा कलाकार बनने के लिए जो मेहनत लगती है, जो डेडिकेशन लगता है, जो सेक्रीफाइस लगता है और जो टैलेंट लगता है, वो सब कुछ होना जरूरी है, तभी तो हो सकता है
1: जी। मुझे एक और सवाल पूछना था, जैसे दोपहर में आप आए, आपने रियाज का पूरा जायजा लिया वहाँ पे, पूरा देखा संगीत म्यूजिक और ये, और फिर आपने कहा ये कैमरा क्या है और ये कैमरा नहीं चाहिए या ये 15 मिनट चलेगा, भाई ऐसा क्यों? हमें लगता है कि आप हमारे साथ अनंत काल तक रहना चाहिए, तो हमें यदि वो संजोना है, आपको वीडियो में ऑडियो में बद्ध करना है, तो फिर ऐसा ये जो आपका घराना है इसके बारे में लोगों को और पता चले।
2: बिल्कुल सही कहा आपने। पहली बात तो ये कि आप जितने भी कलाकार आज तक हुए उनको उठा के देख लीजिए और मुझे देख लीजिए, मैंने सबसे ज्यादा इजाजत दिया है रिकॉर्डिंग करने के लिए, लेकिन आपको साथ में ये भी मालूम होना चाहिए कि इसका मिसयूज भी हुआ है, इसलिए हमें रोकना पड़ता है। हमें पता होना चाहिए कौन कर रहा है, किसके लिए हो रहा है, क्या इसका यूज होगा। अगर कोई एकेडमिक के उसके लिए है, आर्काइव्स के लिए करते हैं, हम कभी मना नहीं करते हैं। कोई चोरी से कर रहा है तो हम उसको कैसे इजाजत देते, वो उसका मिसयूज करेगा तो क्या होगा फिर। आई होप दैट आंसर द क्वेश्चन आपको।
1: जी, तो कंसेंट लेना चाहिए हर किसी ने कलाकार का, ये हम भी मानते हैं, और हमें लगता है कि कंसेंट लेने के बाद आप हमें अगला जो प्रोग्राम होगा वो पूरा रिकॉर्ड करने की अनुमति देंगे।
2: जरूर, हमें पहले पता होना चाहिए कि इसका इस्तेमाल क्या होगा।
1: जी,
2: अगर इसका इस्तेमाल कमर्शियल उससे होने वाला है तो हमको दूर ना रखा जाए, हमको भी शामिल करो, और अगर ये लोगों तक पहुंचाने का काम है तो जरूर इजाजत देंगे हम आपको।
1: जी, बहुत बहुत शुक्रिया उस्ताद जी। अंत में मैं एक कहना चाहूंगा, रेडियो मन भावन के श्रोताओं के लिए क्या संदेश है? हमारा ग्रामीण इलाका है, हमारी योग अभी जैसे खानदेश कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी, जो हमारे चेयरमैन है प्रज्ञावंत नंद कुमार बेंडाले जी, इनके दूरदृष्टिकोण से आज ये सप्त कला का दालन है, तो आज भी बहुत ग्रामीण भाग में ये कलाएं उतनी तरह पहुंच नहीं पा रही है, तो क्या कहेंगे आप कि किस तरह काम करना चाहिए इन कलाकारों ने जो आज हमारे बीच हमारे पास है? तो जैसे बहुत बार होता है कि मुझे कुछ आता है या मैं एक रेडियो का डायरेक्टर हूँ तो अहंकार बहुत आ जाता है, तो अहंकार कम करके संस्कार संगीत के कैसे करें?
2: देखिए, एक बात हमेशा याद रखिए, दो चीज एक साथ कभी नहीं रह सकती, या तो विद्या रह सकती या अहंकार रहेगा। विद्या रहेगी तो अहंकार नहीं रहेगा, अहंकार रहेगा तो विद्या नहीं रहेगी। इसीलिए आपने देखा होगा जो बहुत बड़े कलाकार हैं वो झुक जाते हैं, जिस पेड़ में बहुत ज्यादा फल लगता है वो झुक जाता है। अहंकार और विद्या एक साथ नहीं रह सकते। किसी में जब अहंकार है तो आप समझ लेना कुछ नहीं आता उसको, जिसको कुछ आता होगा। देखिए, हमारे यहाँ एक मिसाल है, ये मैं चाहता हूँ सबको मैसेज दूँ। हमारे यहाँ बहुत बड़े वली हुए, हजरत अली उनका नाम था, अली, आपने नाम सुना होगा अली
1: जी।
2: उनका क्या कहना है, वो कहते हैं कि बड़ा इंसान की पहचान क्या है? बड़े इंसान की पहचान है कि कोई भी इंसान उनकी कंपनी में बैठ के अपने आप को छोटा ना महसूस करे तो वो बड़ा है।
1: सर, जाते जाते हमारे जो अभी स्टूडेंट है, हमारे सुनने वाले श्रोता है, नवोदित कलाकार है जो अभी संगीत की साधना कर रहे, आपके पास भी बैठे बच्चे थे, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे?
2: सबसे पहली बात तो ये देखिए कि मैं ये कहना चाहूँगा कि आज ज़माना फास्ट ज़रूर हो गया है, हर चीज़ में जल्दी रहती है, लेकिन मुझे आप एक बात बताइए, कितना भी आप तरक्की कर ले तो क्या बच्चा जो 9 महीने में पैदा होने वाला तो 4 महीने में हो सकता, पॉसिबल है क्या?
1: नहीं।
2: क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि जब सीधा रास्ता होता है तो उसमें शॉर्टकट मत ढूंढे, सीधे रास्ते पर शॉर्टकट नहीं होता।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय निकाला फिर से हमारे खानदेश कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी, कान्हा ललित कला केंद्र और रेडियो मन भावन की तरफ से बहुत बहुत आभारी, धन्यवाद।
2: नमस्कार।